एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। अभी प्रातः के 5:56:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय

0: संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देश वंदना से।

कार्यक्रम आराधना के आखिर में हम सुनवा रहे हैं आपको हरिहरन की सुमधुर आवाज में भजन।

0: हरिहरन के गाए इस राम भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है ग्रीष्मकालीन ज्वार चारा की खेती। वाचक त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय है।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। खेती के बात में आज बात करबो ग्रीष्मकालीन ज्वार की खेती। संगी हो, ज्वार एक पोषक और स्वादिष्ट चारा देहे वाला फसल है। जेला हरियर सूखा और साइलेज के रूप में खवाए जाते। सूखा भार के आधार में एमा 9-10% क्रूड प्रोटीन पाए जाते। ज्वार ला गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाए जा सकते। ज्वार ला हरियर चारा के रूप में प्रयोग करे पर फूल निकले के पहली नहीं काटना चाहिए। काबर के प्रारंभिक अवस्था में एमा एक ठन विषैला पदार्थ हाइड्रोसाइनिक एसिड पाए जाते, जिन्हा पशु मन के स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव डालते। ज्वार के फसल के खेती पर भूया की तैयारी के जहाँ तक बात करी, ज्वार के खेती लगभग जम्मू प्रकार के भूया में करे जा सकत है, जेमा जल निकासी के बढ़िया व्यवस्था रहे। ज्वार की खेती पर बहुत अच्छा माने जाते। पहली जोताई माटी ल पलटे वाले नांगर में, तेखर पश्चात 2-3 जोताई हैरो मकर के फिर पाटा चला खेत ल समतल कर लेना चाहिए। ज्वार के उन्नत किस्म के जहाँ तक बात है, एकल कटाई PC 6923 HC 171 UP 12-2 Raj 1-2 बहु कटाई SSG 998855 Key 27 Pantchari 5 MFHS MFSH 4-2 द्विदेशीय CVS 15। बुआई के जहाँ तक बात करी, 30-40 kg प्रति हेक्टर बीजा ल 2.5-4 cm के गहराई में 30-35 cm के दूरी में लाइन में ड्रिल के मदद से बुआई करना चाहिए। बीज जनित रोग ले बचाव बर बीजा ल 2-3 g थायरम दवा प्रति किलोग्राम के दर ले उपचारित करना चाहिए। छिड़काव विधि ले कहूँ बुआई करना है तो बीजा की मात्रा ल 15-20% तक बढ़ाना चाहिए। उर्वरक के जहाँ तक बात करी तो नत्रजन 60 kg सिंचित अवस्था में बुआई के समय और 30 kg प्रति हेक्टेयर नत्रजन 1 महीना के बाद प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक कटाई के पश्चात 30 kg नत्रजन प्रति एकड़ डालना चाहिए। मिट्टी के जांच करे के बाद यदि जरूरत है तो पोटास और फास्फोरस खेती ल तैयार करत समय डालना चाहिए। सिंचाई के जहां तक बात करी, सामान्य खरीफ में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होए, आवश्यक होए में 1-2 फीट सिंचाई करना चाहिए। गर्मी में जोन बुआई वाले फसल में पहली सिंचाई बुआई के 15-20 दिन में, तेखर बाद में आगे के सिंचाई 20-25 दिन के अंतराल में करना चाहिए। गर्मी के फसल में लगभग 5-6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ते। खरपतवार के जहाँ तक बात है संगवारी हो, 15-20 दिन के बाद सिंचाई के उपरांत बतर आवे तो निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। एकल कटाई वाले प्रजाति में कटाई बुआई के 60-75 दिन में करना चाहिए। बहु कटाई वाले प्रजाति में कटाई 40-45 दिन में और ओखर बाद के कटाई 30 दिन के अंतराल में करना चाहिए। ये प्रकार ले हमारे किसान भाई मन को खेती करत है खर तो उपज जो उन्हें प्रति हेक्टेयर एकल कटाई 300-400 क्विंटल और बहु कटाई 550-700 क्विंटल हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रही से चारा फसल ज्वार के उन्नत खेती। राम राम, जय जोहार।
0: ग्रीष्मकालीन ज्वार चारा की खेती, इस विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायक हैं श्रीकांत पारगांवकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरित मानस गान। मुख्य गायक थे श्रीकांत पारगांवकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी।

का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। नव विहान में आज हम चर्चा करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक राष्ट्रीय अभियान है, और ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की बेटियाँ सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हों। बेटियाँ केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाती बल्कि वो समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। एक शिक्षित बेटी आगे चलकर एक शिक्षित परिवार और मजबूत समाज का निर्माण करती है, लेकिन लंबे समय तक हमारे समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव देखने को मिला है। कहीं कन्या भ्रूण हत्या, कहीं शिक्षा से वंचित करना, तो कहीं बेटियों को बोझ समझने जैसी गलत सोच समाज में मौजूद रही। इन समस्याओं को दूर करने और बेटियों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। ये योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को बचाना, उन्हें शिक्षा देना और समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। ये योजना केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये जन भागीदारी से जुड़ा एक सामाजिक आंदोलन है। इस योजना के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, लड़कियों के जन्म और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दूसरा, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। और तीसरा, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। हमारे देश में कई वर्षों तक लड़कियों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। इसका मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या और बेटियों के प्रति भेदभावपूर्ण सोच थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने लोगों को जागरूक किया कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज की शक्ति हैं। आज इस अभियान के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर में जागरूकता फैल रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्कूलों में बेटियों के नामांकन को बढ़ावा दिया जाता है। गरीब परिवार की लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियां और शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कई राज्यों में बालिकाओं की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं भी चलाई जा रही हैं श्रोताओं। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाएं और जन संवाद आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों की सोच बदले और बेटियों को समान अवसर मिल सके। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि अब समाज में बेटियों के प्रति सम्मान बढ़ रहा है। लोग बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देने लगे हैं। आज बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक, पायलट, खिलाड़ी और प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये बदलाव केवल परिवारों की सोच बदलने से संभव हुआ है। श्रोताओं, यदि हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए लोग अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग या सरकारी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलों में प्रवेश, छात्रवृत्ति योजनाएं और बालिकाओं से संबंधित अन्य सुविधाएं का लाभ लेकर बेटियों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं बल्कि समाज की मानसिकता बदलने की है। जब हम बेटियों को सम्मान और समान अवसर नहीं देंगे तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है। हमें ये समझना होगा कि जिस घर में बेटी मुस्कुराती है वहां खुशहाली और समृद्धि स्वयं चली आती है। नव विहान में आज चर्चा का विषय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

सुबह 9:55 पर और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रतिदिन की तरह सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। सुबह 7:30 पर आनंद लीजिएगा यादों के झरोके से कार्यक्रम का। कार्यक्रम अमराई हम लेकर आएंगे सुबह 8:30 पर। कलाकार होंगे शेख हुसैन और साथी, परसराम यदू, एलिस जॉन और साथी। फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद सुनिएगा सुबह 10:00। प्रस्तुति होगी संज्ञा टंडन की। हर दिन की तरह सुबह 11:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

जी सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, संध्या 5:05 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। युवाओं के प्रिय कार्यक्रम युवा जगत की ओर हम बढ़ेंगे संध्या 5:35 पर। आज की बात में चर्चा का विषय होगा देश के विकास में युवाओं का योगदान। क्रम होगा समसामयिकी का और सवाल जवाब का। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का, समय होगा 6:20 पर और 7:00 भी। ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे 7:20 पर। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा प्रेम और सद्भावना राष्ट्रीय एकता की पहचान। रात्रि 8:00 अली हैदर के नगमों को हम सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में। रात्रि 8:15 पर हम बिखेरेंगे महक कार्यक्रम रजनीगंधा की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सामाजिक अन्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मन्त्रिणा पेनी वोंगः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17तमस्य विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे।

0: जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों को हमने आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र को। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

आकाश की सुनहरी किरणों के साथ एक नई सुबह ने दस्तक दे दी है। उम्मीदों की रोशनी, ताजी हवाओं की खुशबू और नए सपनों के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम आज सुबह। अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर इस सुबह को बनाएंगे और भी खुशनुमा, ऊर्जा से भरपूर और प्रेरणादायक भी। तो स्वागत अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का, कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, इन दिनों सुबह से ही सूरज आग बरसाने लगा है और दोपहर का समय तो इतना कठिन महसूस होता है कि क्या कहें। तेज धूप, तपती धरती और गर्म हवाओं के साथ एक बार फिर शुरू हो चुका है नौ तपा। हर साल ज्येष्ठ माह में आने वाला ये समय केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि प्रकृति की एक महत्वपूर्ण अवस्था भी माना जाता है। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम आज सुबह में हम बात करेंगे नौतपा के बारे में, साथ ही जानेंगे इस दौरान हमें किन सावधानियों की जरूरत होती है और कैसे हम इस नौतपा की गर्मी में अपने आसपास के पशु पक्षियों और जीवों की रक्षा कर सकते हैं। श्रोताओं, नौ दिन के तपा यानी तपन और गर्मी को नौतपा कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि नौ दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है, गर्म हवाएं यानी लू चलती है और दोपहर का समय बहुत कठिन हो जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भी इस समय गर्म और शुष्क हवाएं वातावरण को गर्म बना देती हैं। हालांकि ये गर्मी असहनीय लगती है, लेकिन प्रकृति के संतुलन में इसका भी अपना महत्व है। ऐसा कहते हैं कि अच्छी तपन से वर्षा चक्र भी प्रभावित होता है और कई प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। श्रोताओं, नौतपा के दौरान विशेष ध्यान रखने वाली कुछ बातें हम आपसे साझा करेंगे। ऐसे तो आप सभी बहुत समझदार और जागरूक श्रोता हैं, मगर फिर भी हमें आप सभी की फिक्र है और ये हमारा फर्ज भी है। अभी घर से बाहर निकलते वक्त सिर पर कपड़ा, टोपी या छाते का उपयोग करें। आंखों पर चश्मा लगाएं, क्योंकि गर्म हवा आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है और कई बार इससे भी लू लगने का डर रहता है। हल्के रंग और सूती कपड़े ही पहनें। श्रोताओं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। नौतपा में शरीर बहुत तेजी से पानी खोता है। डिहाइड्रेशन से कमजोरी, चक्कर, उल्टी और बेहोशी तक हो सकती है। इसीलिए बार बार पानी पिएं, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ORS लें। ध्यान रहे कि प्यास लगने का इंतजार ना करें, समय समय पर पानी पीते रहें। इस मौसम में तो तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब भरपूर मात्रा में मिलता है, इनका सेवन करें। ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और पेट को ठंडक देता है। श्रोताओं, जिस तरह हमें प्यास लगती है उसी तरह पशु पक्षी भी इस भीषण गर्मी में पानी और छांव के लिए संघर्ष करते हैं। कई बार पानी ना मिलने के कारण पक्षियों और जानवरों की जान भी चली जाती है। ऐसे में छोटे छोटे प्रयास किसी जीव के लिए जीवनदान बन सकता है। अपने घर, छत, बालकनी या गली में मिट्टी या किसी भी बर्तन में साफ पानी भर कर रखें। ध्यान रखें कि रोज पानी बदलें और बर्तन भी साफ करें। श्रोताओं, आज नौतपा की बढ़ती गर्मी हमें एक और बड़ा संदेश देती है और वो है पर्यावरण संरक्षण का। लगातार पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और बढ़ता हुआ तापमान मौसम को असंतुलित कर रहा है। कभी अचानक बारिश, कभी आंधी तूफान और कभी बहुत तेज गर्मी, ये सब प्रकृति के बदलते स्वरूप का ही संकेत है। अगर हमें आने वाले कल को

सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देना है, तो हमें अभी से प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनना होगा। श्रोताओ, नौतपा सिर्फ तपन का समय नहीं बल्कि धैर्य, सावधानी और संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। इसलिए खुद का ध्यान रखें, दूसरों की मदद करें और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। मानवता सिर्फ इंसानों की सेवा नहीं है बल्कि हर उस जीव की रक्षा है जो बोल नहीं सकता।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए श्रोताओं, पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: नमस्कार मित्रों, उमा शंकर पांडे से अब आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर, आपका स्वागत है। शहरी यातायात व्यवस्था के साथ ही शहर से बाहर प्रत्येक प्रमुख सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग सहित सभी मार्गों में सभी प्रकार के वाहन भाग दौड़ कर रहे हैं। बिलासपुर जिले का शेष भाग से यातायात संपर्क बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, प्रायः देखा जाता है सड़कों में कितने भी वाहन हो, सभी एक क्रम में आसानी से अपनी स्वाभाविक गति में चलते रहते हैं, किंतु कई बार हम में से ही कुछ लोग जल्दबाजी या हड़बड़ी में पूरी सुगम यातायात व्यवस्था बिगाड़ कर रख देते हैं, जिससे धीरे धीरे लंबा जाम भी लग जाता है। जैसे सड़क में यदि यातायात दबाव अधिक है, वाहनों की संख्या अधिक है, तो दोनों तरफ से एक क्रम में लगातार चलते रहना चाहिए, किंतु कभी कभी दोनों ही दिशा से कुछ लोग ओवरटेक का प्रयास करते हैं, जिससे सड़क में पर्याप्त जगह न होने से सामान्य गति से चल रहा यातायात रुक जाता है और धीरे धीरे जाम की स्थिति बन जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में एक के पीछे एक चलें। ठीक इसी प्रकार सड़क में चल रहे वाहन को या सड़क में खड़े वाहन को यदि पीछे मुड़ना है, तो वे बीच सड़क में ही अपना वाहन आगे पीछे कर मोड़ने का प्रयास करते हैं। इससे भी दोनों दिशाओं में वाहनों की कतार लग जाती है और जाम की स्थिति बन जाती है। अतः अपना वाहन किसी चौक से यू टर्न लेते हुए मोड़े, ना कि बीच सड़क में। वैसे ही कार आदि वाले को यदि किसी दुकान आदि के पास रुकना है, तो वे सड़क में ही वाहन रोककर खड़े हो जाते हैं, इससे भी जाम की स्थिति बन जाती है। अतः अपने वाहन को

0: पीली पट्टी के बाहर खड़ी करें, न कि अंदर। भले ही कुछ दूर चलना पड़े, लेकिन सड़क में वाहन कभी भी खड़ा न करें। यह सभी सुगम यातायात व्यवस्था में बाधक है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना शहर का ट्रैफिक अपडेट। सड़कों पर बढ़ती भीड़ और तेज रफ्तार के इस दौर में यातायात नियमों का पालन करना केवल कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि हमारी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी भी है। हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं थोड़ी सी लापरवाही, जल्दबाजी या यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जरूरी बातों की जिन्हें अपनाकर हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और अपने सफर को सुरक्षित बना सकते हैं। यातायात नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं श्रोताओं। रेड लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट और ट्रैफिक संकेत ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करने वाले संकेत हैं। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो न केवल खुद सुरक्षित रहते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित बनाते हैं। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि हेलमेट पहने, हेलमेट की स्ट्रैप सही तरीके से बांधें, तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं, मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं श्रोताओं, ओवरटेक करते समय सावधानी रखें। याद रखिए कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए भी होता है। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। शराब पीकर वाहन बिल्कुल ना चलाएं। ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। वाहन की नियमित जांच भी कराते रहें। सड़कों पर चलते समय भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। सड़क पार करते समय दाएं बाएं देख कर चलें। मोबाइल देखते हुए सड़क पार बिल्कुल भी ना करें और बच्चों को अकेले सड़क पार ना करने दें। बारिश, धुंध या तेज़ गर्मी के दौरान सड़कें ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे समय में वाहन धीमी गति से चलाएं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, अचानक ब्रेक लगाने से बचें। अगर कहीं सड़क दुर्घटना दिखाई दे तो घबराएं नहीं, तुरंत एम्बुलेंस या पुलिस को सूचना दें। घायल व्यक्ति की मदद करें। भीड़ लगाने के बजाय रास्ता खाली रखें और समय पर मिली मदद किसी की भी जान बचा सकती है। श्रोताओं, सुरक्षित यातायात केवल सरकार या ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की भी साझा जिम्मेदारी है। जब हम खुद नियमों का पालन करते हैं तब समाज में भी जागरूकता बढ़ती है। ध्यान रहे कि तेज रफ्तार कुछ पल का रोमांच तो दे सकती है, लेकिन एक दुर्घटना पूरी जिंदगी बदल सकती है।

श्रोताओं, आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, कुशल लेखक और भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाले नेता थे। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था जो आधुनिक हो, शिक्षित हो, वैज्ञानिक सोच वाला हो और दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली और प्रेरणादायक था। वो सरल स्वभाव, सौम्य व्यवहार और प्रगतिशील सोच के लिए जाने जाते थे। देश के बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह था। यही कारण है कि बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। श्रोताओं, आज़ादी के बाद जब देश नई चुनौतियों से जूझ रहा था, तब चाचा नेहरू ने भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उन्होंने बांधों और उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया था, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की नींव रखी थी, शिक्षा और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया था। IIT, वैज्ञानिक संस्थान और कई बड़े सार्वजनिक उपक्रम आज भी उनके दूरदर्शी सोच की पहचान माने जाते हैं। वो मानते थे कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी और शिक्षा होती है। इसीलिए उन्होंने बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्य किए। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके व्यक्तित्व, देश के प्रति उनके योगदानों को याद कर रहे हैं। और इसी के साथ अब दीजिए अनुमति अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा को, कीजिए स्वीकार मेरा स्नेहिल नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल एक मंदिर फिल्म से। हसरत जयपुरी की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था।

लीजिए, अब हम लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ में साहिर लुधियानवी की शब्द रचना को। धुन बनाई है रवि ने, फिल्म का नाम है काजल।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर इज्जत फिल्म का ये तराना। शब्दकार हैं साहिर लुधियानवी, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा सूकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का STD कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 मई 2026 और 29 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। ये सूचना यहीं समाप्त हुई।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज
6: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
1: श्रोताओं, पेश है आपके रेडियो सेट पर ये दिलकश गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान ने बोल लिखे हैं, OP नैयर ने धुन बनाई है।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुनिएगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के गीतकार हैं, मदन मोहन संगीतकार हैं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, फिल्म का ये तराना। कार्यक्रम यादों के झरोखे से यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

0: सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1900

1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़

0: पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। सेंटर फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज कॉज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट टुडे ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, Former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member

श्रोताओं, शेख हुसैन की आवाज़ में आपने सुना छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए सुनते हैं परसराम यदु और एलिस जॉन की आवाज़ों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत शेख हुसैन की आवाज़ में।

कार्यक्रम अमराई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं परसराम यदु की आवाज में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

अभी आपने सुना शेख हुसैन की आवाज में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए अगला छत्तीसगढ़ी लोकगीत हम सुनवाते हैं आपको परसराम यदु, एलिस जॉन और साथियों की आवाजों में।

0: कैसन आगे जमाना जीत बलची।
1: अरे कैसन आगे जमाना
2: जमाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम अमराई से विदा लेने से पहले हम सुनवा रहे हैं आपको शेख हुसैन की आवाज में कार्यक्रम का अंतिम छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

शेख हुसैन के गाए इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम अमरा यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। शाशा तिरुपति और अरिजीत सिंह की आवाज में अतरंगी रे फिल्म से ये गाना इरशाद कामिल के बोल या रहमान का संगीत।

बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की भावना के प्रतीक बकरीद पर्व की ढेर सारी बधाई।

0: रॉक स्टार फिल्म से आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में गाना, इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरिजो, डोमिनिक सेरिजो की आवाजों में अन्विता गुप्तन के बोल, और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: क्यों भाई?
1: गर्मी के मौसम से तो हम सब बेहाल हैं ही, लेकिन अब लग रहा है लव का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा? आ जाएगा यकीन, अगला गाना सुन लीजिए। लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म से बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, सलीम सुलेमान का म्यूजिक।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: त्वचों में हम जब चले तो।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हां कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली

उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की मां का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में हड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल रॉय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थीं। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

0: सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान।
1: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्य सचिव ने प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के दिए निर्देश। और पेंड्रा में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। अब समाचार विस्तार से। कल शाम हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए माइक्रो एटीएम और रुपे कार्ड उपलब्ध कराने की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी

0: पर विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पिंडरा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर आज के बजाय कल 28 मई को अवकाश घोषित किया है। ये आदेश प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में रहेगा। बलरामपुर जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम कृष्णा नगर स्थित एक दुकान से लगभग 400 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल और 32 बोरी पीडीएस चावल जब्त किया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कृषि विभाग की टीम ने खाद, बीज और कीटनाशक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 6 निजी संस्थाओं के लाइसेंस निलंबित किए गए। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को मानक गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं कुछ जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा तेज हवा चलने के आसार हैं। इस बीच प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्य सचिव ने प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के दिए निर्देश और पेंड्रा में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुति है संज्ञा टंडन की।

0: नवतपा के दिनों में गर्मी सहते हम लोग, पानी की कमी और तलब की दरकार, श्रोताओं से कुछ ऐसी और कुछ और अलग तरह की बातों और उनकी पसंद के गीतों के साथ आज मैं हूं आपके बीच संज्ञा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: हेलो, आकाशवाणी बिलासपुर।
0: हाँ जी, हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम से मैं संज्ञा बोल रही हूँ। नमस्कार
1: जी। नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया
1: जी। मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो स्वागत है आपका प्रेम सिंह जी। बताइए उज्जैन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कैसी गर्मी वर्मी पड़ रही है?
1: जी, गर्मी तो करीबन 15 दिन से 45 डिग्री के पारा चल रहा है यहाँ पे, और गर्म तेज हवाएं भी चल रही है जी। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा।
0: बारिश का दौर शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते से?
1: जी हाँ, लेकिन ये तो मानसूनी बारिश नहीं है अभी। अभी जैसे कि जुलाई में आएगी ना बारिश, उस समय बरसात होगी तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी। यहाँ सोयाबीन लगाई जाती है और कुछ लोग मक्का की फसल भी लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादातर सोयाबीन की फसल ही लगाई जाती है। और उज्जैन में तो आपको पता है बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है।
0: बिल्कुल
1: जी, वहाँ पे मतलब दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, और सावन महीने में काफी भीड़ लगती है वहाँ पे।
0: सावन महीने में भीड़ ज्यादा होती है, पर दर्शन करने तो साल भर ही पहुँचते हैं लोग उज्जैन।
1: जी बिल्कुल, साल भर में किसी भी समय आ सकते हो आपके बाबा के दरबार में। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब दर्शन हो जाते हैं ना, तो सारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है।
0: अच्छा
1: जी, जैसे महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है ना वहाँ पे, ऐसे मतलब मूर्तियां स्थापित कर दी गई है। आपको बताओ कि जन्नत का नजारा अगर आपको कहीं देखने को होता हो ना, तो एक बार महाकालेश्वर बाबा के दरबार में आके देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप घूमते रहो फिरते रहो।

0: आनंद उठाते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, लोगों में बहुत ज्यादा श्रद्धा है बाबा
0: जी,
1: के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और आज आपकी पसंद पर हम बिलासपुर केंद्र से गीत कौन सा सुनवा दें?
0: जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है हीरो और गाने के बोले तू मेरा हीरो है।
1: किसको मानते हैं आप अपना हीरो?
0: जी महाकालेश्वर बाबा को हम अपना हीरो मानते हैं।
1: अच्छा,
0: और उनके चरणों में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त मिला है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं।
1: जी जी जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: मैं मुकेश सोनकर बोल रहा हूँ।
0: मुकेश सोनकर जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो मुकेश जी क्या करते हैं आप?
1: मैं टीचर हूँ और पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ।
0: अच्छा, तो रायपुर प्रॉपर में है, उसके आसपास के किसी गांव के स्कूल में है?
1: नंदनवन हथबन में।
0: अच्छा अच्छा, नंदनवन में।
1: आप संजय टंडन जी बोल रहे हैं?
0: जी जी, बिल्कुल सही आवाज पहचानी है आपने। तो मुकेश जी, तो नंदनवन में एक बहुत बड़ा सा जू बना था बहुत सालों पहले, तो वो अभी वहाँ पे कितना बड़ा हो गया है, उसको कितना विस्तारित हो गया है, बताएंगे?
1: अब तो वो काफी बड़ा हो गया है और अब वहाँ क्या सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं, क्योंकि लोग क्या है कि जानवरों को कुछ कुछ खिला देते हैं इसीलिए।
0: और वहाँ पे अभी कौन कौन से जानवर हैं?
1: अभी तो वहाँ ज्यादा जानवर नहीं रह गए हैं, शेर भालू और सांप वगैरह है, बाकी हिरन वगैरह था उसको ले गए हैं सैनी।
0: अच्छा, रायपुर का एक बड़ा जू है वो
1: जी,
0: जहाँ पे लोग देखने पिकनिक मनाने, तो उसी के आसपास आपका स्कूल है मुकेश जी?
1: हाँ, उसी के आसपास मेरा स्कूल है।
0: तो कौन सी क्लास तक है आपके यहाँ बच्चे?
1: पहली से पांचवी तक।
0: तो आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं वहाँ?
1: यहाँ मैं 28 अगस्त 2010 से आया था मैं।
0: अच्छा।
1: शुरुआती पोस्टिंग तो मेरी डोंगरगढ़ की थी।
0: तो जो पांचवी क्लास में आपका पहला बैच निकला होगा, वो बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे, नौकरियों में लग गए होंगे, तो सब आपके साथ कोई मिलने आते हैं?
1: हाँ, आते हैं मिलने के लिए, और रास्ते में देखते हैं तो नमस्ते भी बोलते हैं।
0: तो कुछ लोग बड़ी पोस्ट पे पहुँचे होंगे, कुछ अच्छा, तो उन लोगों को देख के आपके मन की क्या भावना रहती है?
1: अब मेरे को ये लगता है कि अपने यहाँ से जो पढ़े बच्चे नहीं मिलते हैं तो हम अच्छा लगता है कि हाँ भाई, ये लोग भी अच्छे पोस्ट पे पहुँचे, क्योंकि मैं भी क्या टीचर बन गया तो मैं भी अपने पढ़ाए हुए टीचरों को याद करता हूँ।
0: बिल्कुल, वो लोग भी आपके पास आते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा
1: जी।
0: और आप रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: रेडियो तो मैं मैडम 1989 से ही मस्त सुन
0: अच्छा।
1: रहा हूँ, जब से मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ था उससे।
0: अच्छा अच्छा, तो आप नहीं देख पाते हैं?
1: नहीं भाई, क्या है बचपन से ही मेरा आँख ऐसी है।
0: अच्छा अच्छा, आप नेत्रहीन होते हुए भी इतने बच्चों के जीवन में प्रकाश बिखेर रहे हैं, उन लोगों को बड़े बड़े स्थानों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत तारीफ के काबिल आप हैं। और रेडियो के तो आप इतने पुराने श्रोता हैं, तो आज आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाते हैं?
1: हाँ, मैं तो अपने पसंद का गीत सुनना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके दो नंबर और कौन कौन से जो चल रहे हैं अभी?
0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए जो दो नंबर है वो है 07752 266592 और दूसरा नंबर है 0

0: 7752231 0026।
1: तो मेरी पसंद का गाना है, फिल्म का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गाना है, प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है, तुम हो मेरी जान दुनिया से मुझे क्या।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम बच्ची
0: इंद्र महान सिंह बोल रहे हैं
1: जी मैडम।
0: गुरासिया कॉलरी में इस समय क्या आपकी छुट्टी चल रही है?
1: नहीं मैडम मैं ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ मैडम। यहाँ तो मौसम बहुत गर्म हो गया है, यहाँ जबरदस्त गर्मी पड़ रहा है मैडम।
0: बिल्कुल 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस समय सभी जगह पर।
1: और इस मौसम में लोगों से आग्रह करूंगा तो मैडम की घर से जरूरी तो बाहर निकले, सरकारी नौकरी वाले व्यवसाय वाले क्योंकि निकलेंगे और छोटे छोटे बच्चे लोग घर खाते हैं तो उनको भी घर में बैठाएं, उनको पास में कोई भी कहानी वहानी बताएं और टीवी मोबाइल या

0: बोलते हैं कूलर एसी चालू करके उनको बैठाएं और जानवरों को धूप में ना बांधे, पानी का व्यवस्था भी करें, पानी का बचत भी करें और खीरा ककड़ी समुंदर और कभी भी जा रहे हैं छाता और प्याज को भी लेने के लिए जरूर जाए क्योंकि धूप से बचना है तो हमको सेहत का
1: चलिए आपकी सारी सलाहें जो हैं लोग माने तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। और ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, अपना भी अपने परिवार वालों का भी स्वास्थ्य बचाना ऐसे समय में ऐसी गर्मी में बहुत जरूरी है। जानकारियां हर किसी को हैं, बस लापरवाहियां हो जाती हैं,
0: बीमारी बढ़ जाती
1: है बिल्कुल। और आज आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
0: आज अमिताभ बच्चन और राखी जी का फिल्म का गाना बरसात की एक रात, वो गाना मन चली कौन सी है ये गली, भाई किशोर कुमार आता बोल
1: जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम से मैं संज्ञा बोल रही हूँ।
1: हाँ मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: ध्रुवा राम साहू बोल रहा हूँ, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
0: तो ध्रुवा राम जी, बालाघाट में तो भारी गर्मी पड़ रही है इस समय।
1: हाँ लेकिन आज तो सुबह बारिश हुई हमारे यहाँ।
0: अरे वाह,
1: बूंदाबांदी बादल दिखा रहा। और बारिश भी है बूंदाबांदी।
0: तो नौतपा के बीच में बारिश होने से कुछ होता है क्या?
1: ऐसे तो नौतपा है तो धूप तपना ही चाहिए, क्योंकि जब धूप धरती तपेगी तभी फसल अच्छी होती है।
0: बिल्कुल,
1: क्या मिट्टी में दरार आ जाते हैं बढ़िया, और सूर्य के जो किरणें हैं वो सीधा धरती के अंदर तक चली जाती है, जिससे जो दुश्मन जो कीट है वो नष्ट हो जाते हैं।
0: और अगर बीच में पानी गिर जाता है तो वो जीवित रह जाते हैं, जो बाद में फसल को खराब करते हैं।
1: जीवित रह जाते हैं, बाद में फिर नुकसान करते हैं फसल को।

0: तो इसलिए नवतपा में धरती के साथ साथ इंसान को भी तपने को तैयार रहना चाहिए, ये बारिश वारिश नहीं होनी चाहिए इस बीच में ना।
1: हाँ सही बात है, क्या है हमारी थोड़ी सी लापरवाही के वजह से प्रकृति भी क्या है, जिस समय बारिश होना चाहिए उसमें बारिश नहीं होती, जिस समय धूप ज्यादा होनी धूप नहीं होती, मतलब ये कि उनके संतुलन को कहीं ना कहीं हमारे द्वारा उनके संतुलन को बिगाड़ने में हमारा यहाँ से पेड़ पौधे काट दिए हैं जिसके कारण क्या संतुलित नहीं है पर्यावरण।
0: बिल्कुल, और नवतपा में या ऐसे बहुत तेज गर्मी, नवतपा नहीं भी हो बहुत तेज गर्मी जिस समय पड़ती है, जरा सी बारिश हो जाती है या होती है तो हम वक्ती राहत तो बहुत पाते हैं कि चलो ठंडा हो गया मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हमारी प्रकृति के लिए हमारी आगे की फसल के लिए नुकसानदायक चीज है।
1: हाँ सही बात है ना। क्या है हमको अगर विटामिन डी चाहिए तो सुबह का जो प्रकाश होता है उससे हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है, बाद में अगर दोपहर को अगर तपेंगे थोड़ी हमको विटामिन डी प्राप्त
0: होगी। बस सही
1: प्रकार से समय का बहुत महत्व होता है। हाँ एक प्रकार से कहा गया है कि अति की भली बरतना, अति की भली न वर्षा और अति की भली न धूप, अति की भली न बोलना और अति की भली न चू।
0: वाह
1: कहा गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गया है।
1: क्या है अति सभी जगह वर्जित है, बरतना चाहिए अति से।
0: तो ध्रुवा राम जी बहुत अच्छी जानकारी आपने सब आज साझा की श्रोताओं के साथ, अब एक अच्छा सा गीत भी बता दीजिए जिसको सुन के दिल खुश हो जाए हमारे श्रोताओं का।
1: फिल्म का नाम है आंखों के झरोखों से और गीत है दोहावली।
0: अच्छा
1: अच्छा ना, बड़ा बड़ा ही ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीम अलीरा कब कहे लाख सको मेरा,
0: कबीर और रहीम के दोहों की।
1: हाँ सभी संतों की भजन आधारित है।
0: चलिए सुनते हैं दोहावली आपकी पसंद पर।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो नमस्कार।
0: नमस्कार, अब आपका नाम?
1: कुमार साहू बोल रहा हूँ, करमा चौक लोहारडीहा जिला कमरधा छत्तीसगढ़।
0: क्या हालचाल है करमा डी लोहार चौक के आपके?
1: जी हाल चाल तो ठीक है, और नवतपा लगा हुआ है तो धूप पड़ा है।
0: तो आपके यहाँ आज सुबह कुछ बारिश वारिश नहीं हुई?
1: जी आज हुआ है।
0: हुआ है ना, क्योंकि अभी हमारे पास बालाघाट से फोन आया था तो कवर्धा तो आपके उसके पास ही है।
1: बहुत नजदीक है, ध्रुवा राम साहू जी है क्या? जी जी जी, हम दोस्त हैं और गांव ज्यादा तो दूरी नहीं है, 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब श्रोता साथी रेडियो के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं।
1: बताना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा बात किया है। अपना ग्रुप बना हुआ है तो इसमें ज्यादा तो नहीं बोल सकते, तो 500 लोग भी जुड़े होंगे। तमाम जानकारियां जो है ना, कब क्या होना है, कब कैसे होना है, ये हमें रेडियो के माध्यम से कभी कभी हम नहीं सुन पाते हैं, उस कार्यक्रम को भी हम सुन लेते हैं रिपोर्टिंग के माध्यम।
0: तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, कार्यक्रम आप लोग अलग अलग रेडियो के उस माध्यम से सुन लेते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप लोगों के आपसी भी, 500 लोग अगर आप लोग एक साथ जुड़े हुए हैं आपस में भी, तो आप हर शहर में आपके परिचित हैं, कहीं पे भी किसी भी गांव में जा रहे हैं तो वहां पे आपका कोई रेडियो श्रोता मित्र मिल जाता है,
1: तो हम मुलाकात जरूर करते हैं उनसे।
0: और आप लोगों की इस दोस्ती का माध्यम रेडियो बनता है, ये हम लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है।
1: और बिल्कुल, और बिल्कुल रेडियो ही एक माध्यम है जो दोस्ती उनके साथ जुड़ने का।
0: जी
1: इसलिए तो रेडियो के दीवाने ग्रुप बनाया गया है।
0: आप सब है ही रेडियो के दीवाने लोग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं।
1: बहुत सारे तमाम श्रोताएं हैं, पुराने पुराने हैं हमारे, हम तो युवक हैं लेकिन बहुत पुराने श्रोता हैं, उनसे भी हम जुड़े हुए हैं, हमारे बाप के दादा के उम्र के भी श्रोता जुड़े हुए हैं, और नव युवक भी है और जवान साथी भी है।
0: ऐसा आपको लगता है कि ये पीढ़ी यानी युवा लोग रेडियो सुन रहे हैं? बुजुर्ग लोगों के पास मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे तो वो लोग रेडियो के दीवाने होते थे, लेकिन आज तो इतने सारे माध्यम है तो युवा वर्ग कितना रेडियो की तरफ झुका हुआ है?
1: युवा तो बहुत कम है, जैसे हम जैसे श्रोता 20 सालों से जुड़े हुए हैं तो हम जुड़े हैं, लेकिन आज के युग में युवा लोग बहुत कम है रेडियो के लिए।
0: तो क्या कारण मानते हैं आपके युवा क्यों नहीं जुड़ रहे हैं?
1: कारण यही है कि मोबाइल के द्वारा सब चीज अपना टाइम पास कर लेते हैं ना, और हम लोग जो रेडियो के समय से रेडियो सुन रहे हैं। ये मोबाइल ऐप तो कल परसों की बात है, तो हम रेडियो पहले मोबाइल ऐप नहीं था ना, तब भी हम रेडियो के माध्यम से रेडियो सुनते थे, रेडियो को हम जहाँ पर जाते थे वहाँ पर हम ले जाते थे अपने साथ,
0: और अब मोबाइल के सहारे भी कहीं से पर भी सुन।
1: मोबाइल के सहारे, एक मोबाइल हमारा रेडियो में क्यों रहता है?
0: आप लोग हमेशा दो मोबाइल रखते हैं ना सारे श्रोता?
1: जी घर में रखते हैं एक मोबाइल तो सुनते रहते हैं, नहीं तो फिर साथ में लेके चले जाते हैं, तो एक

0: क्यों रहता है रेडियो।
1: अच्छा, तो चलिए, पहले तो एक ही रेडियो के माध्यम से एक या दो रेडियो ही सुन पाते थे, अब तो आपके पास रेडियो के भी बहुत चैनल्स मिल जाते हैं।
0: जी जी, पूरे भारत के रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन वही तो चाहिए कि सभी के लिए समय चाहिए। जिस कार्यक्रम हम जिन जिन चैनलों को सुनते हैं उसी को हम ज्यादातर ध्यान देते हैं।
1: अच्छा जी,
0: अपने छत्तीसगढ़ में किसी भी चैनल को नहीं छोड़ते हैं, समय समय में हम रायपुर सुनते हैं, बिलासपुर सुनते हैं, रायगढ़ भी सुनते हैं, जगदलपुर भी सुनते हैं।
1: अच्छा जी, तो चलिए अच्छी बातचीत हुई। अब आज बिलासपुर आकाशवाणी से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मैं एक बहुत ही पुराना फिल्म है, फिल्म का नाम है रफू चक्कर, और गीत के बोल है, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़ी ना जिसे, ये वाला गीत सुनना था।
1: चलिए सुनवाते हैं आपको ये।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम में मैं संज्ञा बोल रही हूँ। आप कौन?
1: हाँ नमस्कार मैडम, बिरकोना से सनत कौशिक।
0: बिलासपुर बिरकोना ना?
1: हाँ बिलासपुर बिरकोना मैम।
0: आपके बिरकोना क्षेत्र में तो अब बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी,
1: हाँ
0: पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे सेंटर्स बनते जा रहे हैं।
1: हाँ हाँ पूरा डेवलप हो रहा है मैडम, तरक्की हो रहा है,
0: जी हाँ
1: सभी का सहयोग भी है।
0: बिल्कुल, बिलासपुर से लगा हुआ गांव है और तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप क्या करते हैं?
1: मैं चॉइस सेंटर वाला मतलब काम उठा करना करवाता हूँ मैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और कुछ कुछ।
0: और कुछ कुछ बताइए ना, चॉइस सेंटर में लोगों को क्या
1: और
0: क्या
1: कुछ
0: सुविधाएं मिल
1: कुछ
0: सकती
1: मतलब
0: हैं?
1: श्रमिक कार्ड है और उसमें से योजना वगैरह भरते हैं, उससे लाभ दिलाते हैं।
0: अच्छा,
1: और सभी अधिकारियों का भी सहयोग रहता है जो हमारा काम को फास्ट देता है।
0: अच्छा, बिरकोना क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, रहने वाले हैं, उन लोगों को ही ये फायदे दिलवाते हैं या और किसी क्षेत्र के लोगों को भी?
1: अब जैसे बिलासपुर से भी काम मिल गया ना।

0: तो बिलासपुर का भी करा देता हूँ, बिरकोना लोकल का भी कराता हूँ, जहाँ का मिल जाए।
1: अच्छा।
0: जैसे किसी का राशन कार्ड ट्रांसफर कराना है उसको करा देते हैं, राशन कार्ड बनाना है ये मान लो जैसे मसूरी जिला में राशन कार्ड है उसको बिलासपुर ट्रांसफर है, खुद यहाँ से मतलब दौड़ धूप करके उनका काम करते हैं।
1: और जैसे आधार कार्ड है उसमें कभी नाम गलत लिखा हुआ है तो वो सुधारवाना।
0: आधार कार्ड मैं नहीं करता मैम, रास्ता बता देता हूँ दूसरा चॉइस सेंटर से कनेक्ट करवा के और फास्ट हो जाता है उनका भी काम।
1: अच्छा,
0: मतलब जहाँ से मेरे को जानकारी रहेगा ना वो कस्टमर को यहाँ चले जाओ यहाँ से काम फास्ट हो जाएगा।
1: जी हाँ, ये सारी बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम कई बार अटक जाते हैं और हर किसी को वो रास्ते नहीं मालूम होते हैं कि किस तरह से हम जैसे राशन कार्ड बनवाने की तारीख निकल चुकी है और उसके बाद कोई छूट गया है तो उसके बाद
0: कोई इसमें क्या होता है दिक्कत में, जैसे मान लो कोई वर्कर है उसको छुट्टी नहीं मिल रहा है उसको समय भी नहीं दे पा रहा है तो इसमें समय बच जाता है, कम पैसा लेकर अपना मन का काम मनी करा
1: हो जाता है। तो चलिए अब बताइए सनत जी, आज गीत कौन सा सुनवा दें आपको?
0: कच्चे धागे का कोई भी गीत सुनवा दीजिए मैम।
1: कच्चे धागे के सारे गीत आपको पसंद है क्या?
0: हाँ सारे गीत पसंद है।
1: चलिए सुनते हैं फिर आपकी पसंद पर फिल्म कच्चे धागे का गीत।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं मुन्ना लाल पटले बोल रहा हूँ, ग्राम डुंगरिया मलाजखंड जिला बालाघाट मध्य प्रदेश।
0: तो मुन्ना लाल जी, कब से सुन रहे हैं आप रेडियो?
1: रेडियो सुनते तो मैं छठ भी पढ़ता था तब से सुनते सुनते मैं ग्रेजुएशन हो के बच्चे ग्रेजुएट हो गए।
0: अच्छा, आपके बच्चे भी ग्रेजुएट हो गए, इतनी उम्र है।
1: जी, वो भी रेडियो सुनते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अगली पीढ़ी को भी आपने ये विरासत दी है।
1: जी।
0: तो मुन्नालाल जी, क्या फर्क लगता है पुराने समय के, जब आप छठवीं पढ़ते थे उस समय के बड़े से रेडियो के साथ और आज छोटे से मोबाइल के साथ सुनने में क्या फर्क लगता है आपको?
1: रेडियो का आनंद अलग है। विज्ञान कितना भी विकास कर ले, रेडियो का वो नहीं पा सकता। जैसे जो हम टीवी को खेत में नहीं ले जा सकते, गांव जाते हैं, कहीं जाते हैं, रेडियो पहले पॉकेट रेडियो चल जाता था, अब मोबाइल ऐप में सुन लेते हैं। रेडियो का आनंद अलग है।
0: तो आपको क्या लगता है कि रेडियो की जगह कोई ले सकता है?
1: ना ना ना, मैं नहीं मान सकता इस बात को।
0: बिल्कुल नहीं मान सकते ना आप इस बात को। लेकिन जो पुराने रेडियो और आज के रेडियो में कार्यक्रम है उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
1: पुराने समय में जो कार्यक्रम आते थे ना, वो बहुत अच्छे थे। उस समय के गाने बजाने वाले संगीत वाद्य यंत्र भी बहुत अच्छे थे। आज तो सब इंग्लिश पॉप सॉन्ग ज्यादा हो गया, इसमें फर्क दिखता है। और कार्यक्रम में एक से एक बढ़ोतरी हो रही, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आ रहे हैं अब। हालांकि पहले भी आते थे पर उनमें जैसे कहते नहीं, फिल्टर होता है।
0: बिल्कुल।
1: वैसे हर कार्यक्रम में सुधार कर करके अच्छे से अच्छा कार्यक्रम पेश करते हैं आप लोग, को इससे बढ़ के आनंद तो और हो ही नहीं सकता।
0: जी, तो जैसा आपने कहा कि फिल्टर होता है हर चीज में, तो अब बहुत सारे रेडियोस भी हो चुके हैं और सब अलग अलग तरह के कार्यक्रम दे रहे हैं। रेडियो सुनने वाले लोग फिल्टर करके अपने हिसाब के कार्यक्रम सुन लेते हैं। जिनको पुराने गीत पसंद है पुराने, जिनको अंग्रेजी और फास्ट गीत पसंद है वो लोग वैसे गीत सुन लेते हैं।
1: जी।
0: तो मुन्ना लाल जी, आपसे बातचीत तो बढ़िया हुई। और कुछ बताइए आप अपने परिवार के बारे में। अपने
1: परिवार में क्या है, हम

0: हमारे तो ये वाला फार्मूला है हमारे साथ। मेरी बेटी आचरण पटले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटे का कैंपस आगे है, फोर्थ ईयर है उसका भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का।
1: अच्छा अच्छा, और ये लोग इंजीनियर्स बनने के बाद भी रेडियो सुन रहे हैं ना?
0: सुन रहे हैं, वो ना जैसे बच्चों का कार्यक्रम आता है ना बहन जी, उसको सुन करके बहुत प्रेरणा मिली उनको।
1: अच्छा,
0: जैसे आकाशवाणी रायपुर से बालवाटी का कार्यक्रम हुआ,
1: किसलय वहाँ रायपुर से किसलय
0: हो गया, तो यहाँ से प्रेरणा मिली उनको बहुत।
1: तो वो लोग कभी बालाघाट आकाशवाणी में बच्चों के कार्यक्रम में गए थे?
0: वो क्या है, तब तक जैसे बालाघाट आकाशवाणी जैसे उसके बाद बाहर चले गए पढ़ने, तो वो समय नहीं बन पाया उनके साथ।
1: अच्छा अच्छा,
0: रायपुर ले गया था मैं।
1: अच्छा,
0: वहाँ से उनके साथ सब वहाँ के सब बैठे मिले बातचीत किए, बहुत प्रभावित हुए वहाँ।
1: तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों को रेडियो के माध्यम से बचपन से ही एक प्रेरणा मिली जिसके माध्यम से वो आगे बढ़े अपने जीवन में। और आज आपको गीत कौन सा सुनवा दें?
0: आज मुझे पारसमणि फिल्म का गीत सुना दीजिए,
1: हंसता हुआ नारी जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये खूबसूरत सा सदाबहार नगमा।

0: हेलो, आपकी पसंद
1: जी, मैं परमेश्वर मानिकपुरी बोल रहा हूँ।
0: परमेश्वर मानिकपुरी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं कुमड़ा खोल से बोल रहा हूँ।
0: कुमड़ा खोल कहाँ है ये?
1: तो सारा पता है।
0: अच्छा, तो यहाँ पे क्या खासियत है?
1: जी कुछ नहीं, बस गांव है।
0: क्या यहाँ पे कुमड़े की फसल बहुत ज्यादा होती है?
1: नहीं नहीं बस गांव बस है।
0: गांव बस है तो रतनपुर से कितनी दूर है ये गांव?
1: रतनपुर से 20 किलोमीटर।
0: अच्छा, किधर? पाली तरफ?
1: जी जी नहीं, इधर है, मतलब बगल में पाली के।
0: तो परमेश्वर जी क्या करते हैं आप?
1: जी मैं तो विकलांग हूँ, कुछ नहीं करता, रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं? कितने साल से रेडियो?

0: सुन रहे हैं
1: जी? रेडियो तो बहुत दिन हो गया, 24-25 साल।
0: 24-25 सालों से सुन रहे हैं आप, तो बिलासपुर आकाशवाणी में क्या क्या अच्छा लगता है आपको?
1: हेलो सर, मैं किसान मानी साहब कार्यक्रम सुनता हूँ। बहुत दिन में कॉल लगा है इस बार मेरा।
0: अच्छा परमेश्वर जी, इतनी गर्मी में सब कैसे होता है आपके गांव में, कैसे क्या क्या तकलीफें होती हैं? पानी आता है?
1: पानी तो है दीदी, नल से हम लोग यूज करते हैं।
0: रतनपुर और उसके आसपास का क्षेत्र आज भी पानी से भरपूर है, तालाब अभी भी भरे हुए दिखाई देते हैं।
1: तालाब सूख गए हैं दीदी?
0: सारे तालाब नहीं, कुछ तालाब सूख गए होंगे।
1: जी जी, नल से हम लोग यूज करते हैं।
0: वहाँ पे बाकी आपके गाँव में के आस पास पानी की तकलीफ है?
1: जी नहीं, गाँव में तो उतना नहीं है, पर घर में नल कुआं ऐसे करके हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा, तो वहाँ के लोग क्या पानी बचाने के बारे में सोचते हैं?
1: जी जी जी, सब यूज कर रहे हैं पानी को।
0: नहीं, यूज कर रहे हैं ठीक है, जितना जरूरी है उतना तो इस्तेमाल करें, फिजूल खर्ची ना हो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है ना?
1: जी हाँ जी।
0: वैसी सोच है आपके गांव के लोगों की?
1: जी जी, सोचते हैं मैम,
0: क्योंकि सीमित मात्रा में जितना पानी हमारे पास उपलब्ध है और जनसंख्या बढ़ चुकी है, खर्चा पानी का इतना हो चुका है कि अब धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे चला जाता जा रहा है।
1: जी जी।
0: तो पानी को बचाना हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि कहा ही जाता है जल है तो कल है।
1: जी जी जी जी।
0: तो चलिए परमेश्वर जी, आपके माध्यम से श्रोताओं तक ये बात हमारी पहुंची कि पानी को बचाना बहुत जरूरी है, और अब आपके माध्यम से एक गीत भी हम पहुंचाना चाहते हैं श्रोताओं तक।
1: जी, दीवाना फिल्म के गाना है तेरे दर्द से दिल आजाद।
0: चलिए बिल्कुल सुनवा देते हैं ये गीत।

0: और बस इसी के साथ आज का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम खत्म करने की हम अनुमति चाहेंगे। चलने से पहले आपको हमारे इस कार्यक्रम के फोन नंबर्स बता देते हैं, 07752266592 और 07752231006। और अब अपने तकनीकी सहयोगी कुर्रे जी के साथ आपकी अपनी संज्ञा को दीजिए अनुमति। नमस्ते।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद, प्रस्तुति संज्ञा टंडन की थी। लीजिए अब पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, उमा शंकर पांडे से अब आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर, आपका स्वागत है। शहरी यातायात व्यवस्था के साथ ही शहर से बाहर प्रत्येक प्रमुख सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग सहित सभी मार्गों में सभी प्रकार के वाहन भाग दौड़ कर रहे हैं। बिलासपुर जिले का शेष भाग से यातायात संपर्क बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, प्रायः देखा जाता है सड़कों में कितने भी वाहन हो, सभी एक क्रम में आसानी से अपनी स्वाभाविक गति में चलते रहते हैं, किंतु कई बार हम में से ही कुछ लोग जल्दबाजी या हड़बड़ी में पूरी सुगम यातायात व्यवस्था बिगाड़ कर रख देते हैं, जिससे धीरे धीरे लंबा जाम भी लग जाता है। जैसे सड़क में यदि यातायात दबाव अधिक है, वाहनों की संख्या अधिक है, तो दोनों तरफ से एक क्रम में लगातार चलते रहना चाहिए, किंतु कभी कभी दोनों ही दिशा से कुछ लोग ओवरटेक का प्रयास करते हैं, जिससे सड़क में पर्याप्त जगह न होने से सामान्य गति से चल रहा यातायात रुक जाता है और धीरे धीरे जाम की स्थिति बन जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में एक के पीछे एक चलें। ठीक इसी प्रकार सड़क में चल रहे वाहन को या सड़क में खड़े वाहन को यदि पीछे मुड़ना है, तो वे बीच सड़क में ही अपना वाहन आगे पीछे कर मोड़ने का प्रयास करते हैं। इससे भी दोनों दिशाओं में वाहनों की कतार लग जाती है और जाम की स्थिति बन जाती है। अतः अपना वाहन किसी चौक से यू टर्न लेते हुए मोड़े, ना कि बीच सड़क में। वैसे ही कार आदि वाले को यदि किसी दुकान आदि के पास रुकना है, तो वे सड़क में ही वाहन रोककर खड़े हो जाते हैं, इससे भी जाम की स्थिति बन जाती है। अतः अपने वाहन को पीली पट्टी के बाहर खड़ी करें, न कि अंदर। भले ही कुछ दूर चलना पड़े, लेकिन सड़क में वाहन कभी भी खड़ा न करें। यह सभी सुगम यातायात व्यवस्था में बाधक है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:01 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की।

0: तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
1: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
0: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
1: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
0: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
1: जी,
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
1: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
0: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
1: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी,
1: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
0: जैसे
1: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
0: जी,
1: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
0: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
1: जी,
0: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
1: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
1: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
1: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
0: ये घटना क्या थी?
1: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे? अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
1: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
0: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
1: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
0: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
1: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
0: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।

0: क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
1: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
0: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
1: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
0: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
1: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
0: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
0: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
0: मश्क।
3: होशियार,
0: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना।

0: उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। समझ कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई।

0: रही थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये

0: ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे, 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था, बस फिर क्या था। उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
1: हमला करो दुर्गा माता की।
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
3: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ, ये दिल मांगे मोर।
2: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
3: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिने तरफ जाओ।
3: जी सर।
1: हमला करो। दुर्गा माता की
4: जय।
1: माता की
4: जय।
1: चलो चलो चलो।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साम जी, साम जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नहीं नहीं, तू भी बचवा वाला है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साम जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ, मैं जा रहा हूँ।
5: साम जी, साम जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं,

0: नहीं।
1: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11:31 हुए हैं। आइए पुनः जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
4: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कुछ ही देर में रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। पेंड्रा में बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मार कर की हत्या। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। अब समाचार विस्तार से। कल शाम हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 58% की जगह 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए माइक्रो एटीएम और रुपे कार्ड उपलब्ध कराने की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पिंडरा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ग्रीष्मलहर चलने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, तेज हवा चलने और वर्षा होने के आसार हैं। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद उल

0: बरहा यानी बकरीद के अवसर पर आज के बजाय कल 28 मई को अवकाश घोषित किया है। ये आदेश प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में रहेगा। इस बीच प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के लिए दो दिन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। पेंड्रा में बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81।
2: प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों

0: में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, योगेश के बोल हैं, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं। जरा याद करो।
6: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
6: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
6: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, योगेश के बोल हैं, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपने पराए फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियां नदियां जैसे अपनी धारा के संग चलती है, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियाँ निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारी एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहां ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए है, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे कौर श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को

बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहां थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूं। तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए, जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूं, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गाउड़ी।

बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है, लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा। तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे। तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफर में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियां बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप जरूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूं, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़कर। ये सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा रा हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियां, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियां अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती दूसरों के कदम के लिए, अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठे तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियां, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफर चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफर की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो जरूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मजा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं। हमारी सीखों के लिए कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य जरूरी है,

इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खो ना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमें बोला गया था चाहे ज्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आंख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नजर में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनक ते सौ गुने पढ़ा था, तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहली कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे जरूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे सफर फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज में, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। ये बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आएं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी को अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगे तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूं, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूं। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे, एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे, किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह ना आहत हो। मेरी आत्मा में बसी है ये बात, वहीं पिता का अडिग मंत्र व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूं, इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूं, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूं। बहुत सही बात कही है पिताजी ने। इसे कहा था, बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहे आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूं, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहां पर जोड़ दे रही हूं, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून? बताइएगा, कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा

पेट भर गया। ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो थोड़े समय के लिए सही।

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को, जो फिल्म अंदाज से

0: लिया गया है, और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है, और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा, और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए, और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत कम बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है, जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता जी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी, और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती, और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ, कभी कोई भी हो सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं, मदद जरूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं, पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि, जो कुछ हमारे काम का नहीं है हम तो अनाथाश्रम में दे आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो, अर्थात कीर्तन, सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर जरूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारी श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखा है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, और उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें भी आंखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आईज भी आईज बैंक में डोनेट कर दी हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आंखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? जरा इसका उत्तर आप दीजिएगा, और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है, गायक कलाकारों के नाम बताइए, और बताइए क्या बच्चों में की जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।
1: उठे सबके कदम देखो रंग।

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को जी

को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है जी, बिल्कुल बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है, और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहां काड़ वहां हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी जरूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है, और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी। तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियां और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है जी। मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीजें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती है। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले, फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। सुरीला सफर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सब के बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है, हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन

हल्का होता है, बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है, दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके लिए अच्छा।

क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी। गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं।

कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

0: का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय

0: न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि

0: ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @xhiarnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा। पैचू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए ची।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: राति श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
3: बिल्कुल,
2: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो, और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: बिल्कुल अपने को पूरा ढक लगा के, जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है ककड़ी है इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं जो सैलेड हैं वो आप जरूर खाएं,
3: बिल्कुल,
2: और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिए, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को रखना।
3: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी है, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लें, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें,
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
3: जी,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
3: हल्का
2: वगैरह।
3: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को सखियों को कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे,
2: तरह, तो तरह आपके
3: घर में जी
2: तरह तरह के चावल
3: तरह
2: के
3: तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी हमारे

0: सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का
1: बिल्कुल
0: व्यंजन
1: क्योंकि
0: पसंद
1: आजकल सखा भी बनाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल
1: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सबकाओं में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है?
0: बिल्कुल। और आरती, आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
1: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं
0: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण। हाँ। अब जो घर के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
1: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
0: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है इसके और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों के संसार लेकर आए हैं,
0: तो साड़ियों तरह की साड़ियां आज कहाँ चलने वाले हैं?
1: आज हम साड़ी लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है,
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी।
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए
1: गरिमामयी लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए एक बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
1: जी। कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि ये साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए

0: ईल। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है। और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
0: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
1: जी। कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि इसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर
0: बस,
1: निकाल
0: हाँ
1: देना है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है। कम आंच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
0: बिल्कुल। और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और
0: बिल्कुल
1: ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती हैं कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी
0: बिल्कुल
1: बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन ही लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बिल्कुल, और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली

0: टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ एआई चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
1: बिल्कुल
0: हो रहा है।
1: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है,
0: और हम शिकायतें करते रहते हैं आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
1: बिल्कुल। और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
0: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए, गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और फंस भी जाते हैं, ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे
0: तो
1: गेम बना रहे हैं ना वो लोग कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है।
0: हाँ,
1: वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके की गेम्स बनाए जा रहे हैं कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
0: तो ये और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
1: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आई नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोजकर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
0: क्या
1: बढ़िया।
0: बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
1: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आरती, हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती हैं, फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी है, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है,
0: बल्कि
1: वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीजें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीजें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि अगर कि हम ये चीज कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लिए तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब
0: का
1: तक आप,
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखती हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है, और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया, अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, इसके अलावा वो विविध आरती भी फोन भी जो है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान

0: आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने के बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
1: तो अब क्या करना चाहिए?
0: एक गीत सुनना चाहिए।
1: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात,
1: मीठी मिठास।

0: शुरुआत करते
1: बिल्कुल।
0: हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसे इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
1: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
0: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
1: हाँ बिल्कुल
0: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
1: चलिए
0: तो अब मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंध लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
1: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता, और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ, और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया, और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूं, और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो पता चला एप्रेन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटिफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा

0: उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसे ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है. अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो. आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है.
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं.
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और
1: जी,
0: सबसे रिलेट होता है.
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया, तो ये जो आपकी मुहिम है ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे,

0: फॉर्मर एपीजे कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
1: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
0: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनकी एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है, आपको आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ

0: लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेड्सकेप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से,
1: जी
0: स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है, फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे, 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेट ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ पायलट
1: जी
0: प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफ कोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा, उनका इतना सिंपलिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेड्सकेप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन दिया, एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता है।
1: अच्छा,
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं।
1: वाह
0: तीन
1: वाह,
0: से 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है, नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप
1: बिल्कुल
0: उसे प्ले
1: सुनते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं।

0: वही 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहां पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया, मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था तो वो भी एक जान बचाए, जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन अगर ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये

0: अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं, बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है
0: जी जी।
1: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर हमारे देश में अगर देख, पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
0: जी।
1: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
0: जी।
1: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है।
0: तो लोगों में ये अवेयरनेस
1: बहुत,
0: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
1: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है। और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो, अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो, और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
0: बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
1: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
0: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
1: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहां पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहां पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर

0: यू।
1: अच्छा अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो वैसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रांग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट

0: अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
1: जी.
0: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने की, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती, नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
1: प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहां पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइम मिली, उसका फॉलो अप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए, और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला है तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये बेहद खतरनाक है,
0: ये बहुत खतरनाक है. अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में. चैटजीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है, और आपको किडनी का यू नो, और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी. एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बल लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था.

0: लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है, वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन, आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब से आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट न हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी।
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए
1: जी।
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के, वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयां फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी।

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ।

0: एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग, और लिसनिंग सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट इस ऑफ सॉन्ग है. बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली. अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी. मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो,
1: अच्छा जी
0: कभी टीवी देखा नहीं. ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी.
1: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
0: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है. पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में. और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में. और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें. आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट
1: ओहो
0: और 78 MP
1: हो, क्या बात
0: पार्लियामेंटेरियन
1: है।
0: सपोर्टिंग. और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया, जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू
1: जी
0: सपोर्ट आवर मिशन. बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि क्योर्स में यूज करें.
1: क्या
0: और
1: बात
0: पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है. तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है. अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं.
1: जी
0: और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है
1: जी
0: कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर. सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं. और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं. वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिसिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए. तो
1: जी
0: ये बहुत बड़ा चीज है. और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच.
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30

0: मई 2026 को दिन में 11:30। बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थे जवानी।

0: मैं हूं जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूं कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूं, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूं। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, कुंदीकला, जाम

0: दोहर अखोरा जवा खाण के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये पूर्णिपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांड गांव, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडीह, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 135 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: हमार हाथी हमार गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी हम प्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सायंकाल के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अभिलाषा फिल्म के इस गीत से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार है मजरूह और संगीत निर्देशन R.D. बर्मन का है।

और अब आइए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का गाना। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ है। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है RD बर्मन ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए, अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं बैराग फिल्म का गाना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

और अब कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 को स्टूडियो में जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर के अतिरिक्त उप संचालक विशेषज्ञ डॉक्टर राम उत्तलवार उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा शुक्र में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने के पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 मई 2026 और 29 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब लीजिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शैलाब फिल्म से अनुपमा देशपांडे और साथियों की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के लिखे गीत की धुन बनाई है भप्पी लाहिरी ने।

और अब हम अपने श्रोताओं को ये सूचना देते हैं कि इस समय हीट वेव्स की चपेट में हमारा शहर भी शामिल है। श्रोता मित्रों, दिन में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप में बाहर निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि उस वक्त सूरज की किरणों का ताप बहुत ज़्यादा होता है। और यदि घर से निकलना भी हो तो पर्याप्त मात्रा में पानी का और पेय पदार्थों का सेवन करें, और सभी वो उपाय करें जिससे आप लू से बच सकें, जैसे कि सिर में गमछा या सिर को ढकने का पर्याप्त उपाय अवश्य करें। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। सुनवाते हैं आपको सच्चा झूठा फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है, कमर जलालाबादी की रचना है ये, और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, और अब लीजिए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवा रहे हैं आपको। सौदागर फिल्म का गाना है, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। लीजिए सुनिए।

सौदागर फिल्म के इसी गाने के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं और लीजिए अब हम प्रसारित कर रहे हैं युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त महक। स्वागत है आपका हमारे आज के युवा जगत कार्यक्रम में। उम्मीद करती हूं कि आप अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रख रहे हैं, ख्याल अपनी सेहत का, अपने काम का और अपने वातावरण का। दोस्तों, आज एक छोटा सा सवाल आपसे। जब हम देश के विकास शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना, बड़ी बड़ी सड़कें, नई तकनीक, अच्छे हॉस्पिटल, रोजगार या एक ऐसा देश जहाँ संभावनाएं ज्यादा हो। लेकिन कभी सोचा है इन सब के पीछे असली ताकत कौन है? इन सब के पीछे हैं वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं, रातों को जाग कर मेहनत करते हैं, कभी एग्जाम की तैयारी, कभी बिजनेस शुरू करने का सपना और कभी सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो है युवा। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, आज का युवा थोड़ा अलग है। सपने भी बड़े हैं और स्ट्रगल भी। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बना रहा है और कोई अपना छोटा स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी में लगा है। अब सोचिए, जब लाखों युवा कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हों, स्किल सीख रहे हों, काम कर रहे हों, तो इसका असर सिर्फ उनकी जिंदगी तक कैसे रहेगा? असर तो देश पर भी पड़ेगा ना, क्योंकि देश का विकास सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता, लोगों की मेहनत से होता है। और ये मेहनत ही हमें जुनून देती है, कुछ कर दिखाने का मौका देती है। जरूरी नहीं है हम तभी एक जिम्मेदार नागरिक बने जब हम देश की वर्कफोर्स में शामिल हों। हम अपने आसपास

सफाई रखकर सिविक सेंस का पालन करके भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इस सफर की सोच और जोश को महसूस करने के लिए थोड़ा रुककर उस एहसास को जीते हैं जहां दोस्ती, सपने और जिंदगी एक साथ चलती हैं और ये दिल खुद कह उठता है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने तरीके से। अब उस एहसास को महसूस करने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं खूबसूरत गीत की ओर। गीत हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है से, आवाज़ है शंकर महादेवन की, धुन है शंकर एहसान लॉय की और इसे लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब इन छोटे छोटे जिम्मेदारियों से निकलकर एक बड़े बदलाव की तरफ चलते हैं, जहां हर युवा अपने हाथ में एक नई ताकत लेकर खड़ा है, टेक्नोलॉजी की ताकत। जब हम रोजमर्रा की इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो एक चीज साफ दिखती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने व्यवहार और सोच से होती है, और इसी सोच के विस्तार में अब हम उस दुनिया की तरफ बढ़ते हैं जो हर युवा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर मैं कहूँ कि आज फोन सिर्फ फोन नहीं रहा बल्कि एक छोटी सी दुनिया बन चुका है, तो वो शायद सच होगा। ऑनलाइन क्लासेस, पेमेंट, जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। और अगर ईमानदारी के साथ कहा जाए, अगर कोई पीढ़ी इस बदलाव को समझने में संभव है तो वो है युवा। आज गांव में भी कई युवा अपने दादा दादी को, नाना नानी को ऑनलाइन पेमेंट करना सिखा रहे हैं। कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई फ्रीलांसिंग, तो कोई ऑनलाइन बिजनेस। संभावनाएं सच में बहुत है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि तकनीक बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका इस्तेमाल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन आपको ज़रूरी स्किल तो सिखा रहा है पर आपका समय भी ले रहा है स्क्रॉलिंग के ज़रिए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बस उसके साथ हमारा रिश्ता भी हेल्दी होना चाहिए। जब हम डिजिटल दुनिया में हर दिन नए बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बात दिल के करीब महसूस होती है कि तकनीक ने हमें जितना तेज बनाया है, उतना ही ज़रूरी है कि हमारी सोच भी संतुलित और जिम्मेदार बने। आज सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है, जानकारी भी, सुविधा भी, अवसर भी। लेकिन इसी तेज़ी के बीच कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि असली विकास सिर्फ तकनीक को समझने से नहीं होता, बल्कि उसे जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल करने से होता है। क्योंकि आखिर में कोई भी बदलाव सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रुकता, वो हमारे छोटे छोटे फैसलों पर दिखता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को कितना समझते हैं। और यहीं से एक अहम एहसास जन्म लेता है कि असली प्रगति सिर्फ डिजिटल होने में नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने में है। ऐसा नागरिक जो ना सिर्फ अपने अधिकारों को समझता हो बल्कि अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही जिम्मेदारी से निभाता हो। दोस्तों, देश बदलना बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। मसलन, अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, वोट करते हुए अपने धर्म जाति से आगे बढ़कर मुद्दों और उनके निवारण पर सोचें, पब्लिक प्लेसेस को साफ रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी मेहनत के बलबूते सफल होने का प्रयास करें बिना किसी शॉर्टकट की तलाश के, अपनी पूरी कोशिश करें, तभी हम राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, रिस्पॉन्सिबल होना बोरिंग नहीं है, लेकिन ये तो आपने भी देखा होगा कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझकर निभाता है तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। और शायद यही वजह है जिम्मेदार होना, सफल होना एक खूबसूरत ताकत है जो ना सिर्फ हमें एक बेहतर नागरिक बनाती है बल्कि हमें अंदर से मजबूत भी बनाती है। दोस्तों, युवाओं के योगदान और देश के विकास की ये बातें तो आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि ये सफ़र लंबा है और सोचने समझने की बहुत सी बातें अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है आपसे जुड़ने का और पिछले कार्यक्रम में जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उन जवाबों में झांकने का। तो चलिए जानते हैं ये सवाल और जवाब। हमारा पहला सवाल आपके लिए था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? साथियों, इसका सही जवाब है 1921। 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ नृत्यांगना की, तांबे की मूर्ति, पशुपति

अंकित सील और बहुत से सिक्के भी प्राप्त हुए। साथियों, हमारा दूसरा सवाल था, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? साथियों, इसका सही जवाब है गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा का गौरव इसी राज्य को प्राप्त है। समुद्र की ये लंबी सीमा ना सिर्फ उसकी भौगोलिक पहचान बनती है, बल्कि व्यापार, संस्कृति और विकास के नए रास्ते खोलती है। शायद यही वजह है कि गुजरात हमेशा से भारत की अर्थव्यवस्था में एक खास भूमिका निभाता आया है। साथियों, तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा था, काराकुर्रम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? दोस्तों, इसका जवाब है चीन। ये दर्रा काराकुर्रम पर्वत श्रृंखला में स्थित एक उच्च पर्वतीय मार्ग है जो लद्दाख क्षेत्र को चीन के शिनजियांग क्षेत्र से जोड़ता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। हमारा सवाल था, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? साथियों, इसका जवाब है अवनिंद्रनाथ टैगोर। भारत माता की ये पेंटिंग 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौर में बनाई गई थी। साथियों, आपसे पूछा गया आखिरी सवाल था, सितार और तबले के आविष्कार किसने किया था? साथियों, इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। इन्हें तूतिया हिंद भी कहा जाता है और भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सही जवाब देने वाले हमारे साथियों के नाम हैं, तत्रिंगी भाटापारा से हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बठेना पाटन दुर्ग से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, बंटी और बबली वर्मा। सावतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन। पथरिया से हमारे साथी हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। नरगोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। बोरसरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विभूति साहू। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के लिए कुछ नए सवाल। आपके लिए हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत किस समूह के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को लेकर चर्चा में रहा? आपके लिए हमारा दूसरा सवाल है, भारत का पहला एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? साथियों, हमारा तीसरा सवाल है, भारत किस बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी 2030 में करेगा? साथियों, आपके लिए हमारा चौथा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आधुनिकरण कार्यक्रम कौन सा है? दोस्तों, पांचवा और आखिरी सवाल आपके लिए है, भारत की यूपीआई सेवा को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया? दोस्तों, ये थे आपके लिए हमारे कुछ सवाल। आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। इस सवाल जवाब के छोटे से सफर के बाद अब फिर से उसी सोच में लौटते हैं जहां बात हो रही थी देश के विकास में युवाओं की भूमिका की। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि हकीकत है, जहां हम सब अपनी ऊर्जा, सोच और आशाओं के मोती को कुछ ऐसे पिरोएं कि हमारा देश और हमारे युवा एक मिसाल बन जाएं। तो दोस्तों, ये तो बातें थी देश के विकास में युवाओं के योगदान की। अब चलते हैं सुरों की खूबसूरत दुनिया में, जहां आप हो, हम हो और ये खूबसूरत सा गीत।

साथियों, विकास की राह भी तभी मजबूत होती है जब हम जागरूक हो और अपने आसपास की बातों को समझते रहें। इसी सोच के साथ अब हम रुख करते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों की ओर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 13 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में जनगणना 2026-27 का प्रारंभिक चरण शुरू हो गया है। ये कार्य पारदर्शी और तकनीकी तरीके से किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन देश भर के विभिन्न केंद्रों में किया गया। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग में 506 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया। राज्य में आदर्श शहर समृद्धि योजना के तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया। रुख करते हैं खेल जगत का। आईपीएल 2026 में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। ये मुकाबला धर्मशाला में खेला गया था। भारत के 100 मीटर दौड़ का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कुरिंदर वीर सिंह जी के नाम दर्ज किया गया। खबरों के इस सफर के बाद आइए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म कभी अलविदा ना कहना से। आवाजें हैं शंकर महादेवन, शफाकत अमानत अली की, शंकर एहसान लॉय की धुन है और इसे लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवा जगत कार्यक्रम। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है yj.air.bilaspur@gmail.com। हमारा डाक का पता है द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी केंद्र नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त महक को इजाजत। नमस्कार।
1: अभी युवा जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या काल के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको बता दें अपनी इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में 7:20 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा प्रेम और सद्भावना, राष्ट्रीय एकता की पहचान। इसके अलावा भेंटवार्ता के अंतर्गत सफल कृषक से भेंट क्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 हम आपको सुनवाएंगे कलाकार अली हैदर के गाए गीत। रजनीगंधा कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे रात 8:15 पर। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का प्रसारण आप सुन सकते हैं 6:20 पर और संध्या 7:00। विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे रात 9:15 पर। ये थी इस सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब एक नजर हमारे केंद्र से कल यानी गुरुवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा गेंदा फूल की उन्नत खेती। 6:45 पर चिंतन कार्यक्रम में सुनिएगा श्री DKS ठाकुर का आलेख सार्थक भूमिका। आज सुबह कार्यक्रम का समय रहेगा रोज की तरह 7:05 पर। सदाबहार नगमों से अपनी सुबह को गुंजित कीजिएगा 7:30 पर। माटी के स्वर कार्यक्रम का की सुमधुर लहरियां आपके घर आंगन तक पहुंचेंगी 8:30 पर। आपके पसंद कार्यक्रम का समय रहेगा 10:00 और 10:30 पर श्रोता सुन सकते हैं कार्यक्रम नए तराने। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण हम करेंगे दिन में 11:00। श्रोताओं, दोपहर बाद 4:00 संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल संध्या 5:35 पर महिला श्रोताओं के कार्यक्रम महिला सभा में सामयिक चर्चा का विषय

गर्मी में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक पेय और स्वास्थ्य, इसके अलावा वार्ता के क्रम में बातचीत केंद्रित रहेगी गर्मी में मां का स्वास्थ्य एवं शिशु की सुरक्षा विषय पर। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था। 7:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा मछली पालन हेतु सरकारी योजनाएं। इसके अलावा फोन इन कार्यक्रम में शुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपाय विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर राम उतलवार, अतिरिक्त उप संचालक जिला बिलासपुर, शेष श्रोताओं की बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे श्रोता सुन सकते हैं। कल रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी मिली। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात 8:20 पर और विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से। श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.government.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ला जारी रखे के दिन मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश के आने आने समय बाढ़त तापमान ला देखत लोगन वाला सावधानी बरते के दिन सलाह और प्रदेश के आने आने जिला में खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास पर राज्य सरकार है रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार करही। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल है आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ला जारी रखे के मंजूरी दे दी है। एकर बर केंद्र सरकार कोती ले 25,530 करोड़ रुपया के आवंटन करेगी है। नई दिल्ली में मीडिया माला जानकारी देवत सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है कही ने कि ये योजना राज्य एजेंसी मल्ला अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन के संगे संग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण पर मदद करही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश के आने आने हिस्सा में बाढ़त तापमान ला देखत लोगन मला सावधानी बरते के सलाह दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है लोगन मल्ले कही ने कि ओ मन भरपूर पानी पिए और घर ले बाहर निकलत बेरा अपन संग पानी जरूर रखें। ओमन सुझाव दी ने कि जौन भी प्यासा है ओला एक गिलास पानी जरूर पिलावें। प्रधानमंत्री है जम्मू झन ले कही ने कि ओमन अपन परिवार वाले मन संग संपर्क में रहा और उखर हाल चाल पूछत रहा। मंझनिया के चमचमावत घाम में बाहर निकले ले बाँचे और जतका हो सके आराम करें। ओमन जम्मो झीले आग्रह करी है कि जानवर और पक्षी मन पर घर बालकनी छत दुकान या ऑफिस के बाहर एक ठन छोटे बर्तन में पानी भर के जरूर रखें। प्रधानमंत्री है लोगन मन ले ये मुश्किल के दिन में पूरा संवेदनशीलता और करुणा के संग एक दूसर के ख्याल रखे पर कही है। एति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो जोरदारह गर्मी ला देखत प्रदेशवासी मन ले अपन ध्यान रखे के अपील करे है। मुख्यमंत्री यह कहने कि ज्यादा गर्मी के दौर में हर एक मन खेला अपन स्वास्थ्य के संगे संग अपन तीर तखार के लोगन मन के घलो विशेष ध्यान रखना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय है निर्वाचन आयोग डहल ने कराई गई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता ला बरकरार रखे है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागीची के पीठ आज ये मामला की सुनवाई करत कहने की एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक जरूरत ला आगू बढ़ाते। न्यायालय ये तर्क ला घलो खारिज कर दिन कि ये प्रक्रिया ले मतदाता सूची में पहले से मौजूद मनखे मन के नागरिकता के अनुमानित मान्यता खत्म हो जाती। प्रदेश के आने आने जिला में खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास पर राज्य सरकार है रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार कर ही एकर तहत सरकारी विभाग निगम मंडल और बोर्ड के खाली जमीन मन के उपयोग करके डिजिटल लैंड बैंक बनाए जाही। मुख्य सचिव विकास सिंह की अगुवाई में आज मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में फैसला लेगी कि जम्मू सरकारी जमीन के जीआईएस मैपिंग करके ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करे जाही। उन्हें शहर मन में खाली जमीन में आवासीय योजना व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स

0: मुख्य सचिव विकास सिंह की अगुवाई में आज मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में फैसला लेगी इसकी जम्मू सरकारी जमीन के जीआईएस मैपिंग करके ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करे जाही। उन्हें शहर मन में खाली जमीन में आवासीय योजना व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और सरकारी कार्यालय बनाए जाही। उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में कृषि वेयर हाउस और कौशल विकास केंद्र स्थापित करे जाही। योजना के तहत जर्जर भवन मल्ला हटा के नवा निर्माण कराए जाही और जमीन मल्ला अतिक्रमण ले बचाए बर फेसिंग और सामलात निगरानी के व्यवस्था करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णु साय की अगुवाई में काली संझा मंत्रालय में हुए राज्य मंत्री परिषद के बैठक में कतको महत्वपूर्ण फैसला लेगीस। बैठक में राज्य के आने आने विभाग और निकाय मन में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण बर एमएसटीसी के संग सेलिंग एजेंसी अनुबंध के बेराला अवैया 3 बच्छर तक बढ़ाए के फैसला करेगी। उन्हें छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ला सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाए के प्रस्ताव ला घलो मंजूरी देगी। इकर संगे संग बिटुमिन यानी डामर के कीमत में बढ़ोतरी ला देखत सड़क निर्माण काम प्रभावित झन होवे एकर बर 1 अप्रैल ले 30 जून तक ठेकेदार मन ला थोर बहुत कीमत में राहत दे के फैसला लेगी। राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार पांडे ला प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त करे है। श्री पांडे है रिटायर आईएफएस अधिकारी वी श्रीनिवास राव के जगह ली है। इस संबंध में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहले आदेश जारी कर दिए गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़वो बाची समाचार कोती। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे है काली रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले भेंट करीन। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाए ऊर्जा सुरक्षा खनन क्षेत्र में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्ट कनेक्टिविटी के विस्तार में गोटबात हुई। दोनों नेता मन स्वच्छ ऊर्जा कोयला गैस और सौर ऊर्जा विकास के माध्यम ले निवेश और रोजगार के नवा मौका बढ़ाए पर जोर दी। मुख्य सचिव विकास सिला सहकारी समिति मल्ला मजबूत बना के किसान मल्ला आत्मनिर्भर बनाए ऊपर जोर दिन है। रायपुर में राखे गई राज्य सहकारी विकास समिति के बैठक में उमन हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करे के निर्देश दिन। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स ला दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधि ले जोड़े ऊपर गोटबात हुई। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा बढ़ाए बर माइक्रो ATM और रुपे कार्ड उपलब्ध कराए के समीक्षा घलो करेगी। मुख्य सचिव है सहकारी शक्कर कारखाना में इथेनॉल संयंत्र के निर्माण में तेजी लाए के निर्देश दिए। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला में पाछू रतिया अज्ञात लोगन मन एक झीन सराफा व्यापारी के गोली मार के हत्या कर दी। ये घटना पेंड्रा के कोटमी मुख्य बाजार के बताए जावा थे। मिले खबर के मुताबिक बदमाश मन भीड़ वाले इलाका में व्यापारी पर गोली चलाईन और मौकले फरार हो गए। घायल व्यापारी अस्पताल ले जाएगी जी हाँ डॉक्टर मन ओला मृत घोषित कर दी। पुलिस नाकाबंदी करके आरोपी मन के तलाश शुरू कर दी। ये घटना के विरोध में आज गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला में बंद के ऐलान करेगी जिला सबो प्रमुख संगठन मन अपन समर्थन दिन। घटना के बाद ले कोटमी मुख्य बाजार में सुरक्षा बल मल्ला तैनात करेगी। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश भर चयन परीक्षा काली और परम दिन यानी 28 और 29 मई के जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में बिहार 7 बजे ले राखे जाही। ट्रायल में सुग्घर प्रदर्शन के आधार में खिलाड़ी मन के चुनई करे जाही। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स तीरंदाजी और फुटबॉल जैसन खेल मल्ला शामिल करे गए है। अकादमी में 13 से 17 बच्छर आयु वर्ग के लड़का मन प्रवेश ले सकत है। छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मन के महंगाई भत्ता में 2% की बढ़ोतरी के आदेश जारी करे है। सामान्य प्रशासन विभाग डहले जारी आदेश के मुताबिक अब IAS IPS और IFS अधिकारी मन ला 58% के जगह 60% महंगाई भत्ता मिली। बाढ़े महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 ले प्रभावी माने जाही। राज्य के 900 ले ज्यादा लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम ले ये दिन तेंदुपत्ता इकट्ठा करे के काम करे जावत है। प्रदेश में अब तक

0: 52,000 ले ज्यादा मानक बोरा तेंदुपत्ता के इकट्ठा कर ले गए हे। तेंदुपत्ता संग्रहण में बिलासपुर वित्त सबले आगू हवे, जिया 3,00,000 ले ज्यादा मानक बोरा तेंदुपत्ता इकट्ठा करे गए हे। एखर बाद सरगुजा कांकेर और रायपुर वित्त के जगह हवे। राज्य सरकार डहले तेंदुपत्ता संग्रहण के दर 5,500 रूपया प्रति मानक बोरा निर्धारित करे गए हे और संग्राहक मन के खाता में सीधा भुगतान करे जावत हे। अब थोड़की समाचार सार में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ह बिलासपुर ले रायगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 में यात्री मन तुरते मदद दे बर डायल नंबर 1033 आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करे हे। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा ह बताइन है कि कुछ एक अनाधिकृत मनखे मन ह खुद ला रेरा के अधिकारी या कर्मचारी बता के लोगन मन ले पैसा के मांग करत हे। प्राधिकरण ह आम लोगन मन ला ऐसा साइबर ठग मन ले सतर्क रह के सलाह दे हे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश बर प्रस्तावित प्रक्रिया ला कोनो कारण ले स्थगित कर दी गए हे। और प्रदेश में दिन पड़ा ज्यादा गर्मी ला देखत नवा रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी ला पर्यटक मन बर 28 और 29 मई के बंद रखे गए हे। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ला जारी रखे के दिन मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश की आने आने हिस्सा में बढ़त तापमान ला देखत लोगन मला सावधानी बरते के दिन सलाह। और प्रदेश की आने आने जिला में खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास पर राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार कर ही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:20 हुए हैं और अब लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम के इस भाग के पहले गीत की फरमाइश आप सभी ने ईमेल के जरिए की है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर, सरिता प्रिंस और एकांश गम्हाणकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमेश शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इब्जाल ताज, कोटवर नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय, मंडरवेल महाराष्ट्र से PS नावकर, निर्मला और विशाल नावकर, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले, कर्मा चौक लोहारीडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू, रोहांसी से मुकेश, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोंसी, रोशनी और प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोलवाल, गीता रानी, गीतिका और भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं हमको तुमसे प्यार है फिल्म का गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं इसमें। देव कोहली के लिखे गीत की धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने ईमेल के जरिए की है। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सरवद देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगुड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिस्सार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, महरोल सीतामढ़ी बिहार से नुसरत, जहानाज, तलत, फरहत, रिफअत, नुजहत, साहिया साजिन, नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान और उत्तम जमदाड़े, भोचो कैचनिया, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वारिंदर, कुलदीप, सिमू, एकन, दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, वीरमगान राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा, और आप सभी हैं लगान पंडेरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग, और बुलढाणा वलसिंडी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शुभताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल्स और विलिस डिकेस्टो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, नाईवाला, हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति,

अंशु बबली और प्रियांशु साहू आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर मेरी जंग फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं इसमें। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइशकर्ताओं के नाम इस तरह से हैं। राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद और सगुप्ता अंजुम। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। और तखतपुर से हैं विश्वलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। सौंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन और विनायक सेन। कुम्हार गली कोलगांव से पांडुचंदन, ऊषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्हार। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान शर्मा, शाइना शर्मा, मेंडी शर्मा। नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु।

जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा, धनौरी तेलीवारा से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान, करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार, निमनाबाद जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, दिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति और प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन, फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लड्डी, सालिनी, तिवांशी, वानी और आरबी खेरा, पांडर कबड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, खोंधला, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्य पैकरा। और आप सभी ने सुनना चाहा है मोहरा फिल्म का गीत, पंकज उधास और साधना सरगम की आवाजों में। इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है विजू शाह ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव और देवशंकर जमादार। भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। रजौनी, महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता। पैठण से सुरेश जाधव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। पोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोआराम यदु, खेल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भारत मक्कड़ और कमल साहनी। मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहनी, मोनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आंसू और सोनाली नारंग। बराड़ा, अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह, राहुल। पुरानी भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजिंदर सिंह, उबा राय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार। नागर कोहरा, राजनगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई। भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति साहू, टिकू और मुस्कान। दतरेंगी के हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजें हैं। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम का ये भाग पूरा होता है या आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद विज्ञापन और प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस को जारी रखने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार करेगी। और गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से यह भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी भीषण गर्मी के मद्देनजर लोगों से अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में पर्याप्त पानी पिए और तेज धूप में जाने से बचे। उन्होंने अपने घर, दुकान, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल शाम मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार करेगी। इसके तहत शासकीय विभागों, निगम मंडलों और बोर्डों को की खाली जमीनों का व्यवस्थित उपयोग कर डिजिटल लैंड बैंक बनाया जाएगा। मुख्य सचिव विकास शुल्क की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी जमीनों की जीआईएस मैपिंग कर ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। वहीं शहरों में खाली जमीनों पर आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और सरकारी कार्यालय विकसित किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वेयरहाउस और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बीच मुख्य सचिव विकास शुल्क की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में परियोजना निर्माण और क्रियान्वयन समिति की भी बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि महानदी और इंद्रावती भवन स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के दूसरे और तीसरे तल पर आधुनिक कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। वहीं नवा रायपुर के सेक्टर 24 में संयुक्त शासकीय भवन बनाया जाएगा। आम लोगों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के तहत 43 नई ई बसें चलाई जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियों के साथ संक्षिप्त स्पष्टीकरण और 3 प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय थल सेना ने अग्निवीर के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के 1163 युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के परिणाम भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन्हें सेना भर्ती कार्यालय नवा रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया गया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को आगामी दिशा निर्देशों और प्रारंभिक प्रक्रियाओं के लिए कल 28 मई को सुबह 7 बजे सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यालय शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास नवा रायपुर में स्थित है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला, गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध, मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी अरुण कुमार पांडे को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख नियुक्त किया है। श्री पांडे IFS अधिकारी वी श्रीनिवास राव का स्थान लेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा कल और परसों यानी 28 और 29 मई को जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में सुबह 7 बजे से आयोजित की जाएगी। ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पिंडरा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना के विरोध में आज गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में बंद का आह्वान किया गया जिसे सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया। घटना के बाद से कोटमी मुख्य बाजार में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने बिलासपुर से रायगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए डायल 1033 अत्याधुनिक आपातकालीन चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा ने बताया कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति स्वयं को रेरा का अधिकारी या कर्मचारी बताकर लोगों से धनराशि की मांग कर रहे हैं। प्राधिकरण ने आम नागरिकों को ऐसे साइबर ठगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बलरामपुर में जिला प्रशासन ने जरहाडी में स्थित आदर्श सेवा कृषि केंद्र में निरीक्षण के दौरान गोदाम से 1150 बोरी अवैध यूरिया जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के लिए 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कृषि विभाग की टीम ने खाद

0: बीज और कीटनाशक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 निजी संस्थाओं के लाइसेंस निलंबित किए गए। बलरामपुर जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम राधा कृष्ण नगर स्थित एक दुकान से लगभग 400 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल और 32 बोरी पीडीएस चावल जब्त किया है। और गरियाबंद जिले के उदंती सीधा नदी टाइगर रिजर्व के जल स्रोतों में उदबिलाव की प्रामाणिक उपस्थिति दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार करेगी। और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
2: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7 बजने को है और अब लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम के इस भाग के पहले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, सनी, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरब खुराना और एसके पप्पी। सहारनपुर से आशु मोची। कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी। रायपुर से विनोद वंडलकर, मीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल सलाम राइन और अब्दुल कलाम राइन। पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। पाहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। नेपानगर मध्यप्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। आप सभी ने सुनना चाहा है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है, हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं। गीत लिखा है अनजान ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, पजौनिया जलान उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा श्याम कुमार, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जय श्री ऋषभ और ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमस खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद सादाब खत्री, लूतरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श और आतिका, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, रिंगणी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, बहेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश

कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर आए दिन बहार के फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र एंड नासिर से नाजिया नासिर, साजिद साहिद, नानघाट कातलबोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टीकेश्वर, ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय

जीत साहित, नानघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टीकेश्वर ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अरुण कुमार वर्मा, माया देवी राहुल विनीत सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रानाज और चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्री, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन सेन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अबदीवा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, नालिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जटोलिया, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुर नागपुर से वैशाली सलहेश गवाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर, जालंधर से मीना कौर और मन्नत कौर, यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा और श्राव्या राम टुके, भाटापारा से हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, ओवरैठीपाड़ा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा नेहा और मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उबर डावर और राजेंद्र कटारे, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। लीजिए, आप सभी को सुनवा रहे हैं हिना फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साबरी बंधुओं का। रविन्द्र जैन ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया है, आइए सुनते हैं।

हिना फिल्म के इसी गाने के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:20 होने को है और अब लीजिए हम प्रसारित कर रहे हैं ग्रामीण श्रोता बहनों और भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनैया जम्मू श्रोता संगवारी भाई बहनी मल्ला गौरी बहनी के राम राम जय जोहार। संगी हो संगे संग काली अवैया बकरी तिहार के बहुत बहुत बधाई। जब तिहार बार आते संगी हो तो बात चलते बकरी तिहार के, तो ये तिहार है सब मन खेला त्याग बलिदान के भावना के सीख देते और गरीबी मा मदद और बरोबरी के संदेश देते संगी हो और संगे संग आपसी भाईचारा प्रेम बढ़ाए के तिहार यह आए जिनला काली पूरा हमार सब मुस्लिम भाई मन मनाही है ना भाई। तो देखा तिहार कुछ हुआ सब बढ़िया मिलजुल के मनाते तो बहुत आनंद आते। ये तिहार में प्रेम और सद्भावना हमार देश में एकता के सबले बड़े पहचान आए। जब मन के एक दूसर के माया प्रेम करते और आपस में भाईचारा बनाए रखते तो देश होए चाहे समाज होए चाहे परिवार हो सब मजबूत बनते। और हमार देश है तो काय भाई आप सब जानत हो है ना, विविधता वाले देश है, कई प्रकार के भाषा बोली है ना, अलग अलग धर्म अलग अलग संस्कृति और अलग अलग परंपरा हावय। तभोले कतको अलग है तभोले हम सब एक दूसर से प्रेम करथन और एक दूसर के प्रति सद्भावना ले सब कोई बंधे हमन एक डोरी मा है ना भाई। भाई बहनी हो कतको भिन्नता है तेकर बाद भी हमन सब एक देश के नागरिक कहाथन कहाथन ना भाई। जब भारत देश के नागरिक तो हम सब हाथ उठाथन, ऐसे नहीं है कि मैं भर उठा तू ही भर मन उठा, पूरा देश के नागरिक मन हाथ उठाते। तो हम कतको अलग होते हुए भी हम सब एक हन संगी हुआ। तो हमार कतको देखथन भाषा अलग है बोली अलग है रीति रिवाज अलग है, तभोल जब तिहार मनाथन तो हम एक दूसर के माँ भाग लेथन एक दूसर के तिहार न मनाए बर तैयार हो जाथन है ना भाई। और ऐसने कहो कहिया तो तिहार बाल बोली भाषा के मान सम्मान करथन हमन, दूसर के होए चाहे हमार ला दूसर कोई मन सम्मान करते हम उकर ला सम्मान करथन, एकर से आपसी समझ हा बाढ़ते संगी होए, लड़ाई झगड़ा झंझट कम होते। संगवारी हो कहो हमार छत्तीसगढ़ के बात कहिया त देखथा ना यहाँ के संस्कृति प्रेम दुलार और भाईचारा सफा दिखाई देते। गांव गांव में लोगन मन एक दूसर के सुख दुख में साथ देते। आप सब जाना था हमार सब श्रोता संगवारी भाई बहनी मन एक दूसर के सुख दुख में काम आते। देखा तिहार परब जब आते जैसे हरेली तिहार लेला कि तीजा पोरा लेला कि छेरछेरा लेला कि ईद बकरीद क्रिसमस जम्मो तिहार में हम एक दूसर ला बधाई देथन खाए पिए बर बलाथन। इही मिलना जुलना हन राष्ट्रीय एकता ला मजबूत और

आधार देथे संगवारी हो, प्रेम और सद्भावना ले समाज मा कई प्रकार के लाभ पहुंचाते संगी होवा। त देखा एकता के मजबूती एक में बांधे सब मन खेला है ना भाई, काबर के एक दूसर के तिहार बार ल मनाथन बलाथन मिलथन तो एकर से का होते पूरा हम एक हो जाथन। संगवारी हो अतके भर नहीं प्रगति के बात आते, ऐसन में जब एक दूसर के सहयोग करथन तो आगू बढ़थन। और दूसर बात होते शांति और स्थिरता होते, सहयोग के भावना होते संगवारी होवा, तो ये सब प्रकार ले विकास होते, भाई बहनी हो प्रेम और सद्भावना राष्ट्रीय एकता के असली पहचान आए। देखा एला तो हम गोड़ बात करबो, फिर संदेशल सुन लेथन, तेकर बाद फिर हम आप मल्ला राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के गोड़ बात करबो।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो संगवारी हो, देखा प्रेम और सद्भावना मा समाज में कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। हम अपन से गोड बात करे हैं, एकता में मजबूती आते, शांति और स्थिरता होते, सहयोग की भावना जागते और राष्ट्र प्रगति करते संगी हो, सब प्रकार के विकास होते। तो काबर नहीं भाई, हम प्रेम और सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के असली पहचान ये सब आए तो हम सब एक दूसर से मिलजुल के रहन के दोनों चीज ले देश के हर नागरिक ला एक डोरी प्रेम और सद्भावना हा सब मन खेला एक डोरी में बांधे संगी हो औ देश ला शांति समृद्ध और विकास के रद्दा मा आगू बढ़ाते है ना भाई। तो देखा भाई बहनों, हम आप मल्ला ये प्रेम और सद्भावना के डोरी में बांध के अब एक ठन सूचना आप मल्ला बता देथन। ये सूचना ला आप मन हर 3 दिन सुनथव, सोमवार मंगलवार और बुधवार। काय मोर इशारा समझत हो हमर श्रोता संगवारी भाई बहनी मन, प्रत्येक हर गुरुवार और शुक्रवार के संझा 7:30 ले फोन इन कार्यक्रम में आधारित प्रसारित कार्यक्रम देथन हमन। एमा किसान भाई मन कृषि ले संबंधित है, पशुपालन ले संबंधित है, मुर्गी मछली कुकरी पालन से संबंधित है और अत्य भर नहीं संगवारी हो, अपन स्वास्थ्य ले जेन भी समस्या है स्वास्थ्य के तेकर समाधान पाए बर विशेषज्ञ मन में प्रश्न सवाल के समाधान पाथे। अपन जेन भी सवाल करते हमर विशेषज्ञ मन आ रही थे उमन समाधान करते। तो यही कड़ी में काली गुरुवारे और दिनांक आए 28 मई 2026 के स्टूडियो में जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर के अतिरिक्त उप संचालक विशेषज्ञ डॉक्टर राम उत्तलवार उपस्थित रही। इकर संग बिहनिया 10 बजे ले 10:30 ले 11 बजे तक के सवाल पूछे के जिन विषय है संगी हो, आप समय ला देखा और विषय ला देखा, अपन समय ला गवाहा जान। तब पहली जिन विषय है वो है सुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार और रोकथाम। ये बीमारी काबर होते उसका लक्षण है और लक्षण के बाद उपचार और रोकथाम घलो के बारे में आप मन पूछ सका था। सुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार और रोकथाम। और दूसरिया जिन बेरा है 11 बजे ले 11:30 के येकर विषय है बकरी मन में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार और रोकथाम। बकरी मन में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार और रोकथाम, एकर उपाय। ये विषय ले संबंधित जेन भी समस्या है ओकर समाधान पाए बर आप मन हमार आकाशवाणी के फोन नंबर लगा 2665592। फोन लगाए के पहली एसटीडी कोड है 077752, एला लगाए बर झन भुला। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 28 मई 2026 और 29 मई 2026 के संझा 7:30 ले 8 बजे तक आप सुन सकत हो और समय ला और विषय ला ये दोनों ला झन भुला।

संगवारी हवा अभी एक पैत औ हमाल आप मल्ला बताबो। तो देखा अभी हम गोट बात करत रहें तिहार बार प्रेम सद्भावना के, है ना। तो सब मन खेला एक दूसर के सहयोग आपसी भाईचारा औ सुख हो चाहे दुख हो सहयोग करके अपन घर ला परिवार ला और समाज ला आगू बढ़ावो संगी हो तो जरूर हमला विकास के रद्दा मिल ही और सब ला मिल ही, है ना भाई। तो देखा अभी तो हम गोड बात करते छन फिर ये सुग्घर गीत ल सुनथन जिला गाय है जगदीश कुलदीप और ओकर संगी मन। तो चला ये सुग्घर गीत ल सुनथन।

0: मन खेती बाड़ी के बूता करता।
1: हाँ।
0: पहली थोड़कन अपन बारे में बतावा ना, आप मन कतेक पढ़े लिखे है।
1: मैं हिंदी साहित्य में एमए करे हूँ। और हमार खेती बाड़ी किसान आदमी आन। 5 एकड़ जमीन है जेमा हमन धान लगाथन।
0: तो सबसे पहले तो ये जानबो लीला पटेल दीदी के आप मन एमए करे हम कहा था, तो सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचे है का?
1: सरकारी नौकरी बर अब्बड़ प्रयास करत हन और कुछ नहीं हो पाते वह, तब खेती किसानी रहता को देखे बर लगते, खेती किसानी अभी करत हन।
0: बहुत बढ़िया आप मन के संदेशा है लीला दीदी, पढ़ाई लिखाई तो करें बुद्धि बढ़ाए बर और नौकरी बर प्रयास घला करत हन, और सरकारों अपन प्रयास करत है हमन ला रोजगार देहे बर, लेकिन जब तक के नौकरी नहीं मिले है तब तक के हाथ में हाथ धर के बैठे रहना अच्छा बात नहीं है। और हमारे पुरखौती जन बूता है धरती दाई के सेवा, और इसे भी भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और हमन किसान मल्ला अन्नदाता की थन, भूया के भगवान की थन, ये बूता से आप मन जुड़े हो ये बड़ा अच्छा बात है। कते कन आप मन के खेत है कई की बतात रहा?
1: 5 एकड़ हवा खेत।
0: 5 एकड़ खेत हवा, तो इनमें पल्लो पासी के बढ़िया व्यवस्था हवे?
1: अब बरसाते बस न होते भैया, पल्लो के व्यवस्था है और गर्मी में तो पानी के बड़ा किल्लत होते।
0: हाँ। तो बरसात में का फसल लगा था अपन?
1: धान के फसल लगा थन और गर्मी में लगा नहीं पान, पानी के किल्लत होते तो धान नहीं लगा पान, साग सब्जी लगा थन।
0: नहीं, बहुत बढ़िया अपन बताए हो, ये हमारे किसान भाई मन पर भी बढ़िया संदेशा है कि धान के फसल में सबसे ज्यादा पानी के लगते है ना, और गर्मी के समय में पानी के बिजली के बड़ा किल्लत हो लगते, और कतको जन संगवारी मन घेरी पे धान बोते उमा भूया के जो उपजाऊ क्षमता है वो प्रभावित होते, और भूमिगत जल स्तर जो है वो कम होते। ये अपन बढ़िया करा था कि कम से कम गर्मी में साग भाजी बुआ था, और ये गांव में तो चारों मुड़ा हरियर हरियर दिखते, सब जन साग भाजी खेती करते का दीदी?
1: बरसात में तो धान के खेती करते पर गर्मी में यहाँ सब साग सब्जी लगाते, और जितका साग सब्जी ताजा ताजा है तेन हमारे गाँव में के भकोरा नवा पारा के बिलासपुर मंडी में जाते।
0: अच्छा।
1: गाँव गाँव में सब बिका थे बढ़िया ताजा ताजा, सबे घर न मिला थे बढ़िया साग सब्जी के बहुत खेती होते यहाँ।
0: अच्छा अच्छा, माने हमन बिलासपुर में जो हरियर हरियर साग भाजी देखते हैं भकोरा नवा पारा ले आते आप बताते है ना। तो आप मन खेती बाड़ी जो करता उमा रासायनिक दवा मन के प्रयोग ज्यादा करता के गोबर के घुरुआ खातु है जैविक खातु है एकर ज्यादा प्रयोग करता?
1: हमन जैविक खेती के बारे में ज्यादा सोचथन, गाय गरुआ तको रखे हन ओकर से काय हमन ला खाद के कंडा के छेना के व्यवस्था हो जाते, खेती खार में दवाई के रूप में काम करते, जैविक खेती के रूप में हो जाते वहाँ।
0: तो गाय गरुआ पूछे हम की बता था कते कन गरुआ रखे है?
1: अभी हमारे पास 10 रहे गाय।
0: दूध हुआ बने हो जाते?
1: हाँ हो जाते, 15-20 लीटर होते दूध अभी।
0: तो बोला तो बेचे घला लगत हुआ है, उखरो पैसे मिलत हुआ है आप मन नहीं?
1: हाँ उखरो पैसा बढ़िया मिल जाते, गाय रखे हैं गाय पाला था तो जैविक खेती के रूप में ओकर खाद भी उपयोग हो जाते, ओकर साथ साथ हमारा दूध भी मिल जाते, ओकरो पैसा बन जाते।
0: तो जो गरुआ पूछे हम कहा थे कतेक दिन हो गया आप मन ला पूछे?
1: 10-12 साल हो गए।
0: अच्छा
1: अच्छा,
0: गाय मन ला पाला थन। तो जैसे गर्मी बेरा हमन देखा थन गर्मी अतका ज्यादा है की झवाए कस लगत है हमन ला खुदे में, और खाना पीना खाए के मन लगबे नहीं करे गर्मी के मारे, तो जैसे गरुआ मन है तो गर्मी में तो गरुआ मन के दूध घला कम हो जाते, और मन झुलाए कस हो जाते, तो एक बढ़िया ठंडा पानी उनी की व्यवस्था हरियर चारों की व्यवस्था करते की नहीं आप मन?
1: सब के व्यवस्था करथन, ठंडा पानी हरियर हरियर चारा बारी में सब उपजाए थन, और संध्या पीना जते बेरोकर चारा खत्म हो जाते तब ले लेके देथन हमन काट काट के।
0: बढ़िया मोटाए मोटाए तो दिखा थे गरुआ मन आपके। और हमन ये की वो लीला पटेल जी, आप मन आजकल देखथन सरकार के आनी बानी के योजना चलत है गांव मन में, बढ़िया स्व सहायता समूह भला बनाते महिला मन, आप चूंकि पढ़े लिखे है एमए हिंदी करे हम की बताए है, आप मन कुछ ऐसे योजना में जुड़े है का?
1: हाँ हमू मन जुड़े हमन जो स्व सहायता समृद्धि योजना हमार समूह के नाम है, तेमा हमन सबो महिला जुड़े हन, ओमा भी काम करथन, जो सरकार के जो भी योजना आते ओखर से हमन कुछ कर सकिन, सब मिलजुल के कुछ काम कर सकिन, ऐसे करके ओमा भी हर महीना कुछ पैसा जमा करके ओखर फायदा उठावत हन गाँव में रह के।
0: ये जो स्व सहायता समूह के बात आप मन करे हो ये कतेक दिन हो गए आप मन जुड़े?
1: हमन ला 2 साल हो गए।
0: 2 साल में कतेक जन महिला मन जुड़े है आप मन?
1: हमार जुड़े हवन 15।

0: संगठन हवन हमन
1: और
0: बहुत सारा समूह बने हैं जो हमारे गांव में 25 ठन समूह है खरे 2 ठन संगठन बनाए गए हैं 12-12 जन समूह के संगठन भी बने हवन तो संगठन से भी आओ कुछ करबो ऐसे कर तो खरी योजना ला लाभ उठाबो ऐसे कर तो मैं जुड़े हम।
1: हाँ हाँ तो मैं ये कहत रहे लीला दीदी ये आपके संगठन में जो जुड़े हमारे महिला मन है ना भाई ये मन है आपके संगठन के माध्यम ले जो आपके स्वसहायता समूह है उमा का काबूता करता थोड़ा बढ़िया फोरियाद बताओ ना।
0: हर महीना तो पैसा जमा कर था तेकर कोनो ला जरूरत पड़ जाते तेला एकदम कम ब्याज में पैसा दे थनो मन ला ताकि ओकर काम हा बन जाए कई के।
1: अच्छा
0: अब फिर सरकार से जैसे कि कुछ कुछ योजना मिल जाही दोना पत्तल बनाए के अगरबत्ती बनाए के तो उखर लाभ उठाबो ऐसे करके उखर माध्यम में जुड़े हमन
1: प्रशिक्षण घना मिलते का आप मल्ला
0: प्रशिक्षण तको मिलते। हाँ भैया प्रशिक्षण भी मिलते मतलब में हमन जाथन और बढ़िया हम एकर माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिला थे तेकर से हमन अपन व्यवसाय ला आगे बढ़ा सकथन।
1: तो संगवारी मल्ला अपन स्व सहायता समूह में अपन बढ़ाए के प्रयास घला करत हुआ गांव के महिला मल्ला जागरूक घला करत हुआ है ना भाई। और आने वाले समय में जिंदगी लाऊ बेहतर बनाए ला आपन के अव का विचार हुआ है आपन अव का करना चाहता सरकार से अव का आप मन के आशा है एक बारे में थोड़ा अव बताओ ना।
0: हम अपन समूह के माध्यम से करना चाहथन जो सरकार की योजना आते थे हर प्रकार के उखर लाभ ला उठाना चाहथन सब समूह में भी व्यवसाय के बारे में प्रशिक्षण के बारे में बताना है कैसे का है इसे करके लाभ ला हम उठा सकें और बता सकें ताकि सब ला फायदा हो।
1: अभी जो सरकारी योजना चला थे गोदी माटी के है सड़क बनाए के है सीसी रोड बनाए के है आप मन के गांव में इसमें बूता चला थे कि नहीं चला थे।
0: हाँ सब बूता चला थे सीसी रोड भी बनी से बना थे और गोदी भी चला थे वह हमारे गाँव में भाग लेते हम जैसे हम अपन समय निकाल के सब मदद।
1: तो आपके गांव में जो सरपंच है बढ़िया मतलब सरकारी जो बूता है वाला अपन गांव ला के सब जिला रोजगार दे के काम कर
0: हमारे गांव के सरपंच बहुत बढ़िया हवा है जो जितना सरकारी योजना थे गांव गांव में बताते जिन मोहल्ला में जिन कार्य कराना है वाला बहुत सुंदर ढंग से कराते हमारे गाँव के सरपंच बहुत बढ़िया है।
1: अच्छा
0: ये सभी सरकारी योजना के बारे में पता चल जाते और बताते भी हमारा गांव में जितना भी समूह संगठन बने सब ला जानकारी मिल जाते ओकर माध्यम से सब महिला मन जागरूक हवा यहाँ गांव में हमार और सब बेहतर बढ़िया ढंग से अपन काम ला कर।
1: ये जो सरकारी योजना है एकर बार कभी कभी का है लोन लेहे लगला पड़ जाते है ना भाई।
0: हाँ।
1: तो समूह वाले मन ला तो सरकार के जो बैंक है सरकारी बैंक उमन में बहुत बढ़िया सरलता से लोन भला मिल जाते।
0: हाँ जो हम समूह के माध्यम से लोन है और कुछ भी कराना है ओकर माध्यम से समूह के माध्यम से हम लोन भी मिला थे 1-1.5 लाख जितना भी हम पैसा लेना चाहथन इतना के हम ला दे थे सरकारी योजना के माध्यम से।
1: तो स्व सहायता समूह में जुड़ के आप ला कैसे लगते
0: हम स्व सहायता समूह में जुड़े हैं तो का है एक परिवार के तरह हो गए हैं जो एक दूसरे ला सहारा हो गए है हमारा बहुत बढ़िया लगा थे जो समूह में जुड़े हैं बढ़िया सब मिलजुल के काम करत हैं अपन गांव में घर बैठ के हमारा व्यवसाय मिल गए है तो बढ़िया हमारा काम चला।
1: कहे की मतलब आप नौकरी के आशा में नहीं रख के देखो आप खुद रोजगार करत है और अपन संगे संग अपन और आस पास दीदी बहनी है वो मल्ला रोजगार देवा था रोजगार ले जोड़ा था है ना। और लीला पटेल जी हमन ये कहबो कि आप मन अभी जो नवा उम्र के लड़का है पढ़े लिखे हमें लोली मन वो मन ला अपन माध्यम से का संदेश देना चाहा था आकाशवाणी के माध्यम से कैसे आप मन के जिंदगी बेहतर बनाए हैं वो मन ला अपन अनुभव और अपन बारे में वो मन ला का संदेश देना चाहा था वो मन अपन जिंदगी ला बेहतर बनाए के प्रयास करे।
0: हाँ, की बात कह सकियो के जो भी हमारे नवा युवा पीढ़ी है लड़का हो चाहे लड़की हो बढ़िया पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मेहनत भी करना है। मेहनत ऐसे करना है कि भविष्य में अपन उतार सके कर सके बढ़िया। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के माध्यम से नौकरी पाने से ऐसे करके नौकरी के पीछे भी नहीं भागना है। तो का है गांव में शहर में अपन धंधा पानी व्यवसाय ला साथ साथ करो और पढ़ाई लिखाई ला भी करते रहो बढ़िया पढ़ना लिखना ला भी नहीं छोड़ना है और व्यवसाय ला अपन काम ला भी नहीं छोड़ना है।
1: बहुत बढ़िया आपसे गोट बात करके लगी भकुरवा नवा पारा के लीला पटेल बहनी और आप मन के जो विचार है आकाशवाणी बिलासपुर के माध्यम से ये अस गई पस गई मा जतका दुरिया पहुंची निश्चित तौर ले जिन बहनी है वो मन सुन

0: आपके बात से प्रेरित हुई अब अपन जिंदगी में आगू बढ़ी। आप मन बूता करत रहा उला रोक के हम अल्लाह अतका बढ़िया समय दे है। एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत बहुत आभार। राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार भैया।
2: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे सफल महिला कृषक हमर बहनी लीला पटेल से चैतू भाई के गोड बात। इमर रहीन ग्राम भकुर्रा नवापारा के विकासखंड तखतपुर जिला बिलासपुर। देखा संगी हो कतका सुग्घर वो बहनी है, पढ़े लिखे है और नौकरी पाछू नहीं भागिस और अपन खेती खार गाय गरुआ पाल पोस के आमदनी ला पढ़ा है। अपन कतका सुग्घर बात है ना भाई। आज के तापमान को कहबो तो अधिकतम तापमान हवा 44.5 डिग्री और कम तापमान हवा 29.9 डिग्री। संगी हो तापमान हाँ बहुत बढ़े है। बाहर निकला था तो बने अंगोछी बांध करके निकला, आँखी में चश्मा लगा लो और पानी जरूर धर लो संगी हो, और काम है तभी निकलो भाई। काबर की हम अभी सुनत रहें समाचार में तो बचना गर्मी ले बहुत है, और हमारे श्रोता संगवारी और किसान भाई मल्ला तो मेहनत करना है भाई घाम में, तो जरूर अपन सुरक्षा कराए, अभी बहुत गर्म है संगी होवा। तो ये तो हो गए तापमान, और फिर आप मल्ला सूचना के सुरता दिवा दे थन। हर गुरुवार और शुक्रवार के संझा 7:30 ले फोन इन कार्यक्रम आधारित प्रसारित करे जाते। एमा हमर किसान भाई मन खेती किसानी की बात हो, चाहे कुछ पाले के पाले पोसे की बात हो, गाय गरुआ है कि कुकरी मुर्गी है कि मछरी है, और अतके भर नहीं संगी हो, अपन स्वास्थ्य के जैसे समस्या है ओकर समाधान पाए बर हमर स्टूडियो में विशेषज्ञ मनाते, उनकर से सवाल पूछ के समाधान पा सकत है। यही कड़ी में काली गुरुवारे और दिनांक के 28 मई 2026 के स्टूडियो में जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर के अतिरिक्त उप संचालक विशेषज्ञ डॉक्टर राम उत्तलवार उपस्थित रही। इकर संग बिहनिया 10:30 ले 11 बजे के जिन विषय है सुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम। सुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम यह है संगी हो पहलिया विषय है, और दूसरिया जिन विषय है तेन हा बिहनिया 11:00 ले 11:30 के एकर जिन विषय है तेन हा बकरी मा छेरिया बकरी मा PPR बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम के उपाय। विषय ला बिल्कुल झन बुलाहा, ये विषय ले संबंधित जेन भी आप मन के समस्या है जिज्ञासा है जेन भी पूछिया एकर बारे मा हमर डॉक्टर साहब रही इकर संग पूछ सका था, और फोन नंबर है 2665592। फोन लगाए के पहली STD कोड 07752 जरूर लगा। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग प्रसारण होही 28 मई 2026 और 29 मई 2026 के संझा 7:30 ले 8 बजे तक। संगी हो एक बात और हम आप कहबो के शोरगुल हल्ला की लईका मन के आवाज की छेरी बोकरी के आवाज ये झर रहे थोड़ा दूर में शांत जगह में फोन लगा हा ते एतिक सुनैया भी अच्छा सुनाई देही, और आपो मल्ला जिन समस्या है समाधान पाहा ओला अपन सुन सका था। बढ़िया साफ जगह में जिहा नेटवर्क बढ़िया रहे तेन में ले फोन करिया संगी हो, विषय आप मल्ला बताए हन। अब चला आप मल्ला हम ले जथन मंडी कोती, तो बिलासपुर मंडी मा बिलासपुर जिला के तखतपुर मंडी में धान महमाया हाँ 1900 रुपया प्रति कुंटल है, और कोटा में धान महमाया हाँ 1700 ले 2250 रुपया प्रति कुंटल है। बिलासपुर मंडी की बात करबो तो पत्ता गोभी साग भाजी में पत्ता गोभी हावे 1100-1200 रुपया, करेला हा 2400 ले 2600 रुपया, लौकी हा

800 ले 1000 रुपया, रमकेरिया हा 1100 ले 1200 रुपया, और चुकंदर अभी के बेरम सलाद खा संगी हो मुरई के चुकंदर के त मुरई हावे 1200 1300 1400 रुपया, गोंदली हा 1300 1400 1500 रुपया, आलू हा 1200 1300 और 1400 रुपया है, और पताल हा 1800 1900 2000 है, और फूल गोभी हा 1000 ले 1200 रुपया है, और भाटा हा 800 ले 1000 रुपया है संगी हो। फल फलेरी के बात करबो तो धर्मी हा 1200 1300 1500 रुपया है, और आमा दशहरी है 3300 3400 3500 है, और कलिंदर है 1200 ले 1400 है, और केरा है 2000 ले 2200 रुपया हावे संगी हो। ये तो हो गए साग भाजी के बाद फल फलेरी के बाद, अब ये सुघर कस गीत ल सुनाथन जेला गाय है अनुराग ठाकुर और कर संगी मन।

अभी जिन गीत गात रही ने अनुराग ठाकुर मन सुघर गीत रहीस किसान भाई मन कहबो अभी के बेरा में खरीफ मौसम

के खेती बाड़ी की तैयारी करे, खेत ल बढ़िया गहरी जोताई कर लेवाए और खर पतवार ल उखाड़ के फेंक देवाए। बीजा के बढ़िया उन्नत किस्म की तैयारी रखे, व्यवस्था रखे और धान है, मक्का है, राहेर है, सोयाबीन है, इकर उन्नत किस्म के व्यवस्था कर ले भाई। और व्यवस्था करे के संगे संग बीजा के उपचार जरूर कर ले। उपचार करेल का हो संगवारी हुआ, कीड़ा मकोड़ा रोग राई ले बचाव हो ही है ना भाई। अब कृषि यंत्र है, अब ये भाई महीना 15 दिन में शुरू हो जी, तो कृषि जिन यंत्र है उकर मरम्मत रखा कर ले, रख रखाव सही रखा जेकर से समय में वो यंत्र के उपयोग कर सके। और संगी हो सबले जरूरी बात हम कहबो, तो जिन गाय गरुआ है ओकर विशेष ध्यान देवा, जिन भी जीव जंतु पाले पोसे है ओला तो पानी कांजी खाना पीना के बिल्कुल तंदुरुस्त रखा भैया हुआ। काबर की अड़बड़ गर्मी परत है, अब पानी गाय गरु वाला 4 पैत 5 पैत पानी देवा संगी हुआ। काबर के पानी बिना फाय फाय करत जीव जंतु मन, तो पानी की व्यवस्था कम से कम सबले ज्यादा करा संगी हुआ। और देखा जैसे हम अपन व्यवस्था करत हन वैसने अपन जेन भी जीव जंतु पाले हन ओकर व्यवस्था करन। एकरे संग हमर बेरा हो गए घर जाए के, तो गौरी बहिनी के राम राम जय जोहार संगी हुआ।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बजे हैं। लीजिए, पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के इस अंक में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम सजा लाए हैं गायक कलाकार अली हैदर के गाए गीतों को। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत से।

0: आकाशवाणी बिलासपुर से आप इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचाते हैं, अली हैदर का गाया हुआ।
1: बातें करने का टाइम नहीं है, छुप कर फिर बातें हम करें। बातें कर करके जब हम थक जाएं, शुरू से बातें फिर करें।

और इसी गीत के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8:15 हुए हैं और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीकंधा। कार्यक्रम के इस अंक में अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आप सभी को इस बेहद खूबसूरत सी शाम की शुभकामनाएं। श्रोताओं, रजनीगंधा के फूलों की खुशबू जैसे फिजा में धीरे धीरे घुल जाती है, वैसी ही एक चीज है जो इंसानी रिश्तों में मिठास घोल देती है, और वो चीज है भरोसा। भरोसा जिसे कमाना पड़ता है, जो कांच सा नाजुक भी है और लोहे सा मजबूत भी। आइए इसे मौजों पर आज की रजनीगंधा आज की शाम सजाते हैं और आगाज करते हैं इन पंक्तियों से कि रिश्तों की बुनियाद तो सिर्फ एक लफ्ज पर टिकी है। इसे भरोसा कहो, यकीन कहो या एतबार कहो, टूट जाए तो ये दुनिया भी बेगानी सी लगती है, सलामत रहे तो पतझड़ में भी फूलों की बहार कहो।

जी हाँ दोस्तों, भरोसा एक ऐसा धागा है जो दो दिलों को अदृश्य होकर भी जोड़े रखता है। जब किसी पर अटूट विश्वास हो तो समंदर की लहरें भी रास्ता दे देती हैं, लेकिन जब यही भरोसा डगमगाता है तो इंसान खुद से भी रूठ जाता है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा कांच के जैसा है, जरा सी ठेस से चटक जाता है, बड़ी मुश्किल से जुड़ता है पर निशान रह जाता है। कभी जो जान कहते थे वो अनजान बन के मिलते हैं, जब अपनों की वफाओं पर शक का साया मंडराता है।

मुश्किल तो ये है कि आज के दौर में लोग चेहरा देखकर दिल लगा लेते हैं, मगर उस दिल पर यकीन करने में उम्र गुजर जाती है। किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के पहले हम हजार बार सोचते हैं, क्यों? क्योंकि दिल एक बार टूट जाए तो दोबारा जल्दी किसी की बातों पर एतबार नहीं करता। जमाने के सवालों का मैं क्या जवाब देता, जख्म जब अपनों ने दिए तो गैरों को क्या सजा देता। भरोसा तो मैंने अपनी धड़कनों का भी करना छोड़ दिया। तुम आंखों की बात करते हो, मैं तो सांसों को भी भुला देता।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा और आज हम बात कर रहे हैं भरोसे की। वैसे दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर भरोसे ने जख्म दिए हैं तो इसी भरोसे ने दुनिया को जिंदा भी रखा है। सोचिए, अगर किसान को जमीन पर भरोसा ना हो तो वो बीज क्यों बोए? अगर परिंदे को अपनी परिवाज पर भरोसा ना हो तो वो आसमान में पंख क्यों फैलाए? और अगर हमें कल की सूरज कल की सुबह पर भरोसा ना हो तो हम आज की रात चैन से कैसे सोएं? भरोसा खुद पर होना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों पर। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, अपनी उड़ान पर। ये कायनात भी झुक जाएगी एक दिन तेरे जहान पर। भरोसा गैरों पर करोगे तो बस उलझने ही आएंगी। खुद पर भरोसा रख, फिर राहें खुद मिलेंगी मुकाम पर।

और जब बात मोहब्बत की हो तो बिना भरोसे के प्यार की कल्पना भी अधूरी है। मोहब्बत नाम ही है एक दूसरे को खुद को सौंप देने का, जहां कोई शर्त नहीं होती, जहां शक की गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत में भरोसे की अहमियत को बयां करता ये शेर सीधे दिल तक पहुंचता है कि मेरी खामोशियों में भी वो मेरी हर बात सुन लेता है, बिना कुछ कहे ही वो मेरे दिल के जज्बात सुन लेता है। मोहब्बत में इस कदर गहरा है उस पर भरोसा मेरा कि बूंद आँखों से भी वो मेरे लिए सही राह चुन लेता है।

यही तो खासियत है इस खूबसूरत एहसास का। मगर अफसोस, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स में ही भरोसा ढूंढते हैं, जबकि भरोसा तो आमने सामने बैठकर आंखों में देखने से बनता है।

0: और आज के इस महकते सफर में बस इतना ही। उम्मीद है आज रजनीगंधा की खुशबू के साथ भरोसे का ये पैगाम आपके दिलों तक जरूर पहुंच गया होगा। मुस्कुराते रहिए, खुद पर यकीन रखिए और अपने भरोसे को कभी मत तोड़िए, अपनों का भरोसा न तोड़िए। और अब दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। अभी आप रजनीगंधा कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 8:45 होने को है। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला 3रा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5

0: अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी

0: ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री

0: at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले करेंगे।

फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी की बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सीआईडी 909 इस फिल्म का गाना, एसएच बिहारी का लिखा हुआ, धुन ओपी नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

0: सी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: आसमां को चूमे ओ हो हो हम जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं

दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते, और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हां कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की मां का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार।

नृत्य के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया, हाँ तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: इतने काय को झगड़ा करना जी? आमा बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में हड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाते हो, ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म खान।

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी, तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहां, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों? खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं, संयोगों से जन्म लेती है। न उन्हें गढ़ा जाता है, न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम आधार।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा

0: कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।